सुप्रभात 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड तथा प्रसार भारती ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। अपनी इस प्रसारण सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं।

आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक

0: गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है।

0: सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6:05 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

आइए सुने आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

आइए सुने आज का चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 183। संगीत सरिता कार्यक्रम का प्रसारण होगा 6:45 से और इसका पुनः प्रसारण 6:45 से। आज आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 7:00 से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। 8:00 का समय रहेगा समाचारों के लिए और 8:15 से कार्यक्रम होगा त्रिवेणी। चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय 8:30 से। पार्श्व गायक तलत महमूद पर केंद्रित कार्यक्रम

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 183। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की आज अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और आमंत्रित कलाकारों का हम स्वागत कर रहे हैं। कल्पना जी, हमें बताइए कि क्या शास्त्रीय संगीत में महिलाओं की रचना शैली पुरुषों से भिन्न रही है?
2: जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पहले जमाने में जो रचनाएं बनाई गई वो अधिकतर पुरुषों द्वारा ही बनाई गई है, रचित की गई है
1: जी।
2: तो उसमें उनके मन के भाव परिलक्षित होते हैं, या जो वर्णन किया जाता है वो महिला के लिए उद्देश्य से किया जाता है
1: जी, जी।
2: कई रचनाओं में नृत्य के लिए उपयोगी बंदिशें बनाई गई है, इसमें भक्ति भाव है
1: जी।
2: तो वो एक अलग एस्पेक्ट था, और अब जो महिलाएं बंदिशें बनाती है उनके मन के भाव अधिकतर हमको उसमें दिखाई देते हैं
1: जी।
2: और उसके साथ में श्रृंगार और मधुर शब्दावली और अलग अलग मन की भावनाओं को प्रकट करना, व्यक्त करना, ये अधिकतर हमें दिखाई देता है आजकल की जो महिला रचनाकार बंदिशकार हैं उनके।
1: तो आज किन बंदिशकार की चर्चा आप करेंगे?
2: आज हम डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे जी के बारे में हम जानकारी बताएंगे और उनके द्वारा बनाई हुई बंदिशों को भी प्रस्तुत करेंगे। अश्विनी जी ने संगीत की तालीम जयपुर अतरौली घराने की गायिका और उनकी माँ श्रीमती माणिक भिड़े जी से तालीम हासिल की, जो गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी की शिष्या थी। उसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर पई जी से भी संगीत का मार्गदर्शन प्राप्त किया, और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का उन्होंने रचनाओं का संकलन राग रचनांजलि के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है
1: जी।
2: और अनेक शिष्यों को आजकल वो तैयार कर रही है घराने की परंपरा के अनुसार, और अलग अलग शैलियों की शिक्षा भी वो प्रदान कर रही है
1: जी। तो जी, आज की इस कड़ी में किस राग की चर्चा की जाए?
2: आज अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिशों में से राग सोहनी में एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बेग मोरी सुधारो करतार
1: जी।
2: तो राग सोहनी का थोड़ा सा चलन मैं बताती हूँ और अनुजा आपके सामने वो बंदिश प्रस्तुत करेगी
1: जी। स्वागत है।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। ये जो तान ली आपने इस बंदिश में, बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत अंदाज हम सबको बहुत पसंद आया, और राग सोहनी पर आधारित ये रचना थी, अपने श्रोताओं को बता दें। अब कल्पना जी बताइए कि हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगी आप?
1: अब अश्विनी जी ने गाई हुई, अश्विनी जी ने बनाई हुई बंदिश आपको राग नंद में हम आपको सुनवाते हैं, मोहे करण देरे, ताल तीन ताल में
0: जी।

अब हम आपके सामने अश्विनी जी ने बनाई हुई राग मेघ में एक बंदिश सुनवाते हैं, मेघ श्याम घनश्याम।

0: संगीत सरिता की आज की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर अश्विनी भिड़े देश पांडे की। अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं और कल के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम कुछ और जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें आज आप सुन रहे थे।

अनुजा सिंह, गायन सहभाग रहा अनुजा झोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओ नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के साथ हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं तलत महमूद और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ।

सोने की चिड़िया फिल्म के इस गाने से हमने शुरुआत की आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की। युगल स्वर थे तलत महमूद और आशा भोसले के, साहिर लुधियानवी की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत। साथियों, मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद की आज पुण्यतिथि है, तो आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनके कुछ नायाब गीतों को हमने शामिल किया है। चलिए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें संगीत है मदन मोहन का, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। पॉकेटमार फिल्म का ये गाना क्या कहता है, आइए सुने।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़े, उससे पहले ये संदेश
1: सुनिए।
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। साथियों, इन भूले बिसरे गीतों की मिठास एक सुकून देती है। इनका सौंदर्य, इनकी खूबसूरती यूं ही बरकरार रहेगी। चलिए एक और मीठा सा गीत सुन लेते हैं।
4: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से। न्यूज ऑन आईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 7:15 हुए हैं। हम जानकारी दे दें अपने केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ ही देर बाद प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों के तुरंत बाद आप 7:30 पर सुनेंगे गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। आज सुबह 8:15 सुनिएगा सुर संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे आज दोपहर 12:30 और लोक संगीत का समय होगा आज शाम 5:30। आज सुबह 8:30 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम में अयोध्या। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और महाराणा प्रताप जयंती। अन्य जानकारियों के साथ इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे नाटिका ननकू की ससुराल। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। आज सुबह 9:00 कार्यक्रम होगा आपके संदेश आपके गीत। आज सुबह 9:30 आप सुन पाएंगे आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें आसपास की। शाम 6:10 पर शाम सुहानी और दोपहर 1:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 1:30 पर आप सुन पाएंगे फेसबुक फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आज शाम 6:30 पर सुनिएगा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। आज रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार से। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे गीतकार तलत महमूद के बारे में। आज रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महफिल गजल और 9:30 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आज दोपहर 2:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम नारी जगत में आप सुन पाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली, जिसका विषय होगा मूक जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य।

साथ ही चर्चा होगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर। आज शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा हमारा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा होगी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और महाराणा प्रताप जयंती पर। हमारी धरोहर सेगमेंट में आप जान पाएंगे शांति निकेतन के बारे में। आर्थिक जगत से आज जानकारी हम साझा करेंगे आपसे डेफ अकाउंट के बारे में। कार्यक्रम किसानवाणी का समय होगा आज शाम 6:45। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सामयिक कार्य विषय पर। साथ ही सुनेगा हमारे मेहमान डॉक्टर आनंद सिंह, सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से की गई भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा गर्मी की जुताई से लाभ। यह तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के खास खास कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस वक्त आपसे रूबरू है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 7:18 होने को हैं। कुछ एक संदेशों के पश्चात ठीक 7:20 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को
2: भारतीय आर्काइव्स
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार।

0: अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक

0: वक्त पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास

0: किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
1: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: दोकाशो होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार

इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: दसवीं शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। कार्यक्रम में हम सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये राम भजन। लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
3: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए।

0: सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901। 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा हमारा फोन नंबर 7376804090। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम अमृत कलश में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये राम भजन।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश, आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और प्रसार भारती ऐप पर। 8 बजने को है सुबह के, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
4: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।

0: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
0: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच

0: तीन दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरेह बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश।

0: मार्वल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आपने सुना खुशबू जैन की आवाज़ में ये मीठी सी रचना, और अब प्रोग्राम के अंत में सुनिए सुखविंदर सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

सुखेंद्र सिंह के गाए ऐसे प्यारे से गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब समाप्त होता है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम पामे अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। जी हाँ, ऐसे पक्षी जो अपने ब्रीडिंग सीजन में भारत देश में आते हैं या अन्य स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर

0: उनको पानी की, भोजन की पर्याप्त सुविधा मिलती है। ऐसे पक्षियों का आज दिन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 2026 में हम अनेक सामुदायिक विज्ञान परियोजनाओं का पता लगाने जा रहे हैं जो पक्षियों, उनकी आबादी और उन्हें खतरे में डालने वाले कारकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है, ताकि उन्हें और उनके आवासों की रक्षा करने में हमारी क्षमता में सुधार हो सके। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस में कला का हमेशा से गहरा महत्व रहा है और 2026 में भी यह उत्सव का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इस वर्ष हमने 7 प्रवासी पक्षी प्रजातियों को चुना है ताकि दिखाया जा सके कि सामुदायिक विज्ञान किस प्रकार इन पक्षियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है और हम उनके संरक्षण में सहयोग करता है। ब्राजील में पहली बार अपनी शानदार कढ़ाई के माध्यम से इस विशेष पक्षी प्रजाति को जीवंत किया गया है। उनकी जटिल और बारीक कारीगरी इस विषय के सार को खूबसूरती से दर्शाती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कनाडा और अमेरिका में मई के दूसरे शनिवार को और मेक्सिको, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों में अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आधिकारिक तौर पर मनाया जाता है। हालांकि हर दिन पक्षी दिवस होता है और आप हर साल के किसी भी दिन पक्षियों का जश्न मना सकते हैं, क्योंकि अपने घर की बालकनी पर या अपने छत पर जब आप चावल के दाने और छोटे छोटे अनाज के दाने डालते हैं और बहुत सारे पक्षी आकर के वहाँ चहचहाते हुए उन दानों को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो यकीनन उनको देखकर हमें भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। फिलहाल ये तो थी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात, और आज महाराणा प्रताप का भी एक विशेष दिन है। जी हाँ, आज है महाराणा प्रताप जी की जयंती। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की और वर्षों तक उससे लोहा लेते रहे। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने में सफल नहीं हो सका। अपने इस देश मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी से भी दो दो हाथ करने में पीछे न हटना ही महाराणा प्रताप की पहचान थी। आज ऐसे वीर प्रतापी व्यक्तित्व की जयंती हम मना रहे हैं। महाराणा का जन्म आज के ही दिन उदयपुर मेवाड़ राजस्थान में 1540 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप के बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल बादशाह अकबर उन्हें बिना युद्ध ही अपने अधीन करना चाहता था और उसके लिए उन्होंने विशेष दूत बार बार लगातार उनके पास भेजे थे, परंतु उन्होंने अपनी मातृभूमि को पराधीन करने से बेहतर युद्ध लड़ना उचित समझा और वर्षों तक लोहा लेते रहे। अकबर कभी भी उन्हें अपने अधीन नहीं कर सका। माता भारत माता के ऐसे लाडले वीर सपूत को उनकी जयंती आज के दिन हमारा सादर नमन। और अब कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक नाटिका, कोरा चेक। इसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत पटेल। आइए सुनते हैं प्यारी सी नाटिका।
1: राम राम राम, क्या जमाना आया है। ये आजकल की संतानें तो बिल्कुल बेशर्म हो गई हैं। दो अक्षर पढ़ जो लिया, दृश्यता की भी कुछ सीमा होती है।
2: क्या बात है, सुबह सुबह किस पर बिगड़ रहे हैं आप?
1: तेरी लड़की पर। मैं कहता हूँ, ऐसी बात मुझसे करने में उसे शर्म नहीं आती? बाप बेटी के बीच से मर्यादा का बंधन ही तोड़ दिया।
2: लेकिन हुआ क्या, उसने कौन सी मर्यादा का बंधन तोड़ दिया?
1: वो कह रही है कि हम यदि विवाह के लिए दबाव डालेंगे तो विवाह ही नहीं करेगी।
2: हाय राम, न लाज न मर्यादा, पिता के सामने ऐसी बात करती है, उसे शर्म नहीं आई? मेरी मानो तो अब उसकी शादी कर दो, जवान बेटी को कब तक कुंवारी रखेंगे? लड़के का जीवन तो पीतल के लोटे की तरह है, दाग भी लगा तो मांझने पर साफ हो जाता है, लेकिन लड़कियां तो कुल को कलंकित कर सकती हैं। अजी सुनो तो, रेखा के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है, वो लोग सर्व संपन्न भी हैं।
1: तुम जो लड़का बता रही हो वो तो बिल्कुल बुद्धू राम है, न पढ़ाई, न रूप रंग, न व्यवहार।
2: लड़कों का रूप रंग थोड़े ही देखा जाता है, हरा भरा घर रहे तो कई लड़कियों वाले टूट पड़ते हैं।
1: लेकिन उसका बाप भी तो एकदम मक्की चूस है। हमने रेखा के पीछे जो खर्च किया है उसमें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा और विवाह भी सादगी से करेगा, फिर समाज में हमारी प्रतिष्ठा।

0: क्या होगी?
1: करोरीमल जी,
2: लो तुम्हारे दोस्त हजारीमल जी आए हैं, मैं अंदर जाती हूँ।
3: जयराम जी की करोरीमल जी?
0: जयराम जी की।
3: क्या हुआ, किसने आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित किया? क्या आपकी बेटी किसी के साथ?
0: खबरदार हजारीमल, जो मिमी में आए वैसे बक देते हो, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? करे कोई दुश्मन की बेटी?
3: अरे लो भाई, आप तो सचमुच ही गुस्से में आ गए। अरे बाबा, आप इन्हें तो प्रतिष्ठा के कलंकित होने की बात कही।

0: की बात आते ही सब पीछे हट जाते। आप ही बताइए, लड़के के पीछे कम खर्च किया है मैंने? मैं दहेज थोड़े ही मांग रहा हूँ। दहेज मांगना तो भीख मांगने के बराबर है। मैं तो पढ़ाई का खर्च मांग रहा हूँ, वो पैसा भी उनकी लड़की को ही जाएगा। भगवान की दया से मुझे दाल रोटी तो मिल ही जाती है। ये तो रिवाज जो चला आ रहा है उसी को निभा रहा हूँ। वैसे तो लोग 50,000 तक आए हैं, लेकिन उतना तो मेरा बेटा 3-4 महीने में ही कमा लेता है।
1: और भी एक लड़की है, लेकिन बताने में कुछ संकोच होता है।
0: इसमें संकोच कैसा? कहने आए हो तो कही डालो, छाछ लेने जाते हो तो भगोना क्यों छुपाना।
1: बात वास्तव में ऐसी है जी कि लड़की कुछ श्याम वर्ण है तथा ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है।
0: जी रंग, अरे अमेरिका में भैंस भी जाती है तो गोरी हो जाती है। और फिर कृष्ण भगवान भी कौन गोरे थे? रही पढ़ाई की बात, तो अमेरिका में उसे नौकरी थोड़ी ही करनी है। हाँ अच्छा, नगद की क्या तैयारी है, कुछ कहिए।
1: नगद नारायण की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, कोरा चेक ही देने को तैयार है। कोरा चेक? हाँ?
0: कोरा चेक?
1: जी हाँ।
0: हाँ, ये हुई ना कुछ काम की बात। इसमें आप संकोच क्यों कर रहे थे? इस जमाने में तो ऐसा है ना, जो शर्माता है वो ही पछताता है। अरे रेखा की माँ, जरा चाय तो बनाओ। देखो स्नेहल के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है।
2: आई भैया, लड़की का बाप क्या करता है?
0: अब तो ये लपन छप्पन कहाँ करने बैठी, कोरा चेक दे रहा है तो धंधा भी अच्छा ही होगा।
2: लड़की कैसी है?
1: भाभी जी, लड़की वैसे तो ठीक है, कुछ श्याम वर्ण है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं ना कि अमेरिका में जाने के बाद वर्ण खुल जाएगा।
2: पढ़ाई क्या की है?
1: अपना नाम अंग्रेजी में लिख सकती है।
2: क्या अपना स्नेहल ऐसी लड़की पसंद करेगा?
0: तू चुप बैठ। तू कौन सी सुंदर और पढ़ी लिखी है मुझे मालूम है। तूने ही बच्चों को मुझे लगाया है, उसे कहाँ नौकरी करनी है, पता लिखना आया तो बस।
2: लेकिन लड़की का स्नेहल से कुछ तो मेल होना चाहिए, कुछ तो जोड़ी जमनी चाहिए।
0: लड़की पसंद करने के लिए वो थोड़े ही यहाँ आएगा, हम उसके माँ बाप हैं, कोई दुश्मन थोड़े ही है। देखिए हजारीमल जी,
1: जी
0: आप लड़की की सुंदर रंगीन तस्वीर बनाकर मुझे देना।
1: अच्छा जी,
0: मैं उसे अमेरिका भेज दूंगा। देखो कम से कम तस्वीर तो आकर्षक रहनी ही चाहिए, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे अस्वीकार करता है।
2: ये सब तुम जाने दो, मैंने तो तुम्हें सजग कर दिया है, बाद में कुछ हुआ तो मुझे मत कहना।
0: अरे तुम चुप बैठो, तूने ही बच्चों को बिगाड़ दिया है। मालूम है कोरा चेक जो मिलने वाला है तुम्हें क्या मालूम, तुम तो बस खर्च ही करना जानती हो। इतना अच्छा मौका यदि हम जाने दें तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे। हजारीमल जी,
1: जी
0: आप चिंता मत कीजिए, एक रंगीन तस्वीर ला दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
1: बहुत अच्छा।
0: और हाँ, वो कोरा चेक मुझे देकर विवाह की तैयारी करवाइए।
1: जी हाँ, तो फिर मैं चलूं?
0: हाँ हाँ, शुभ शीघ्रम। आप लड़की वालों से तैयारी करवाइए।
1: जी
0: मैं स्नेहल को बुला लेता हूँ। हेलो, कौन? हजारीमल? भाई करोड़ीमल बोल रहा हूँ, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, 4 बजे स्नेहल आ रहा है, रात में मिले थे। वे लोग एरोड्रम पर आ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, अरे जोरों से चल रही है। हाँ क्यों ना हो, इंजीनियर दामाद जो ठहरा, स्वागत भी ऐसा होना चाहिए कि लोग दांतों तली उंगली दबा दें। अच्छा लेकिन लड़की को याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ, स्नेहल देखते ही मोहित हो जाए। हाँ अच्छा, वहीं मिलेंगे।

0: उठा लेती हूँ।
1: अरे विमान को रुकने भी तो, बस अब यहाँ से आगे हमें नहीं जाने मिलेगा।
0: हाँ। वो देखो वो दरवाजा खुला, लोग निकलने लगे। वो गोरा युगल कैसा हाथ में हाथ डाले उतर रहा है। एक दिन हमारा स्नेहल भी इसी तरह उतरेगा। वो देखो अपना स्नेहल, वो रहा। हाँ,
1: हाँ?
0: वो हमें देख कर हाथ उठाया।
1: अरे जरा ठीक से तो देख, वो तो कोई गोरी युवती का साथी है, वो तो उस तरफ जा रहा है, वो स्नेहल कैसे हो सकता है?
0: वो देखो वो अकेला युवक उतर रहा है ना, वही अपना स्नेहल है।
1: अरे तू ही पहचानने में धोखा खा गई, अपना स्नेहल तो उससे ऊंचा है। यहाँ था कभी भी गोरा था, और वहाँ जाकर और भी गोरा हो गया होगा। तो
0: सब लोग उतर गए, अब तो परिचारिकाएं तथा विमान चालक भी बाहर आ गए।
1: क्या बात है, अपना स्नेहल क्यों नहीं आया? क्या वो विमान तो चुक नहीं गया?
0: नहीं नहीं, स्नेहल विमान नहीं चुका, आप निशाना चुक गए। अरे वहाँ दूर क्या देख रहे हैं, यहाँ सामने देखो कौन खड़ा है।
1: अरे बेटा स्नेहल तू कबूतरा, अरे मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं।
2: पायला को पिताजी,
1: सुखी रहो बेटे, सुखी रहो।
0: आपकी आंखों ने उसे पहचान लिया था, लेकिन कोरे चेक के लालच में आपका दिल उसे अपनाने को तैयार नहीं।
2: पिताजी, माँ ये मेरी पत्नी मारिया।
1: पत्नी
0: स्नेहल, ये तू?
2: पिताजी मैंने अपना योग्य जीवन साथी खोज लिया है, आप आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसका नाम मीरा रखा है, मीरा। मरिया ये मेरे माता पिता है, उनके चरण छू, माय पेरेंट्स।
1: स्नेहा ये तू किसे उठा लाया है? उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है?
3: What's all this? ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कहते थे तुम्हारा डैडी मम्मी बहुत अच्छे हैं,
2: very good,
3: बहुत ब्रॉड माइंडेड है।
2: Yes.
3: फिर ये फर्क काय का, ये जातवाद क्या करता है, इतना गुस्सा काय को? Oh Christ!
2: Oh nothing darling, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बहुत खुश हो गए हैं दरअसल, they very happy, you express your obedience.
3: Oh पिताजी माता जी, मैं जीसस को सामने रख के प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको ओबे करूंगी, आपका बहुत बहुत सेवा करूंगी। ओह हाय रेखा, हाउ डू यू डू, हम तुम्हारे वास्ते बहुत अच्छा हस्बैंड भेजा था।
2: हाँ पिताजी, माता जी, ये हैं मेरे बहनोई, अपनी रेखा के पति वहाँ अमेरिका में डॉक्टरी कर रहे हैं, यहाँ रेखा के साथ ही पढ़ते थे, तब से इन दोनों में प्रेम हो चुका था। वे एक दूसरे जाति के हरिजन हैं, बड़े चारित्रशील और गुण संपन्न हैं। आप इन दोनों को वरमालाएं पहनाएं। रेखा रेखा पिताजी को मालाएं दे दो।
3: That's good. तैयार होकर हमारे बाजू में खड़ा हो जाओ, पिताजी हम सब का गालन करेगा।
1: ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, होश संभालिए, अब यहाँ लोगों को तमाशा दिखाना है क्या? जल्दी से दोनों को मालाएं पहना दीजिए ना।
4: मुबारक हो करोड़ी मल जी, मुबारक हो आपको गोरी बहू, मुबारक हो होनहार दामाद, मुबारक हो। आपने तो कोरा चेक मांगा था, बदले में गोरा चेक पा लिया।
1: हजारी मल मैं मर गया, ये क्या हो गया, मेरा कोरा चेक?
4: जो हुआ सो अच्छा ही हुआ सेठ जी, उस लड़की का बाप तो आज सुबह ही जेल का मेहमान बन गया है, वह तो तस्कर निकला, स्मगलर।
0: तब तो रेखा भी हमारे पास से चली जाएगी, फिर हमारे पास कौन रहेगा?
3: ओह मामा डोंट यू वरी, उसकी आप चिंता मत कीजिए माता जी, जीसस ने उसका भी अरेंजमेंट कर दिया।
2: हाँ मामा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका प्रबंध भी हो जाएगा। वो ऐसा है कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। अब फिर आपका पौत्र तो आपके पास ही रहेगा।
3: Look, look, Shannon, look what your dad is doing. He's falling. Catch him.
2: पिताजी, पिताजी,
1: मैं लुट गया। मेरा कोरा चेक, मेरा कोरा चेक।
2: पिताजी, पिताजी,

0: हमें आकर आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, अभी तक विमान क्यों नहीं आया? क्या विमान में कुछ?
1: अरे काली, शुभ अवसर पर ऐसा नहीं सोचते। अब वो देखो क्षितिज पर अपना विमान आ रहा है।
0: वो, अरे वो।
1: अरे अभी से कहां उठ गई? देख अभी तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये लड़की वाले नहीं आए, हजारीमल जी का पता नहीं।
0: आते ही होंगे, वो तो समय पर आ जाएंगे। देखो विमान उतर रहा है, तुम हार उठा लो, मैं अन्य सामग्री।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90 44 20 70 70।

संदेशों के पहले आपने सुना था नाटिका कोरा चेक, इसके लेखक थे डॉक्टर चंद्रकांत पटेल। दैनिक

कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्यारा सा गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब हम चलते हैं अपने अंतिम पायदान की तरफ। जी हाँ, हमारा सेगमेंट समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है? जी हाँ, सबसे पहली बात है कि मौसम में बदलाव हो चुका है। पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बीते चार दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दिन में गर्मी और उमस महसूस होने लगी है। और अब दूसरा समाचार। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए 5 नए अंडरपास बनाए जाएंगे। इन अंडरपासों के निर्माण से स्थानीय लोगों, किसानों और राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी और दुर्घटनाओं में कमी आने की आशा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से रामसनेही घाट अयोध्या खंड पर अरकुना, रानीमऊ, कुड़ा, सादात, भेलसर और सतीचौरा सहित 5 स्थानों पर अंडरपास बनाए जाने की योजना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था। यहां पर पहले भी बहुत सारे सड़क हादसे हो चुके हैं। NHAI के परियोजना निदेशक ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात की सुचारू व्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और हाईवे पर यातायात का दबाव भी कम होगा। इन अंडरपासों के अलावा अयोध्या गोरखपुर खंड के ब्लैक स्पॉट्स पर भी सूचना बोर्ड और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, ताकि वाहन चालकों को पहले से सतर्क किया जा सके। NHAI ने निर्माण कार्य की प्रारंभिक प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं और इसे तय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और अब दूसरी खबर। अयोध्या मंडल के बॉक्सिंग संघ के सचिवों की बैठक आयोजित की गई थी, और जिसमें मंडल स्तर पर बॉक्सिंग खेल के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंडल में बॉक्सिंग खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति बनी है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए नियमित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही जिला व मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन की कार्ययोजना भी तैयार की गई है। अयोध्या बॉक्सिंग एसोसिएशन के अनुसार ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्हें उचित मंच और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसे खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में खेलो बॉक्सिंग, स्वस्थ रहो और देश का नाम रोशन करो के संदेश के साथ ही मंडल में खेल प्रतियोगिताओं को मजबूत करने पर संकल्प लिया गया है। ये तो थी बात समाचार पत्रों से, और अब इस कार्यक्रम से अपने इस दोस्त विवेक सोनी को दीजिए इजाजत।

0: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें। कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
1: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
0: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
1: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
0: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
0: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
0: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
0: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। न्यूज ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। लीजिए सुनिए व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।

0: भाई।
1: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
4: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
3: हरियाई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
4: फोन नंबर 91-61-877-347।
5: सुनत हूँ सखी, सुनते हूँ कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
6: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
5: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
6: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
7: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
8: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
9: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। इस वक्त आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। कार्यक्रम में आपके संदेशों को हम पढ़ें और आपकी फरमाइश के गीत सुनवाएं, उससे पहले एक आवश्यक माइक्रोफोन सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित हैं। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 GST के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 GST के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से सायंकाल 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में यानी सोमवार से शुक्रवार के मध्य प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

और अब कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में पहली फरमाइश आई है ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर के श्रोताओं की। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, सुचान, अरजान अब्बासी और अयान अब्बासी, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रंग का ये प्यारा सा गीत जिसको हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक के साथ पी सुगंधा ने, गीत लिखा समीर ने और उसे सुरों से सजाया नदीम श्रवण ने। फिल्म रंग का ये प्यारा सा गीत जा रहा है आप तक।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है फिल्म फांसी के इस गीत को सुनवाने की, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह और राहुल की। आपकी फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं आप तक। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित ने, गीत लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक आवश्यक सूचना। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय होगा ऑस्टियोपोरोसिस, कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376804090, दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 के मध्य। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। और अब फरमाइश आपकी। सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी थापा, राधिका, और छत्तीसगढ़ से जानवी, दामिनी, यामिनी और नरेंद्र डोम, डोंडी लोहारा से हरिशंकर बेलदार, फरजू, प्रभा रानी बेलदार, और जेल रोड रायगढ़ से उमा राज और जगदीश राज का संदेश आया है। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सैनिक का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने, गीत लिखा समीर ने और उसे सुरबद्ध किया नदीम शमर ने। ये प्यारा सा गीत जा रहा है आप तक।

और अब कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत का अंतिम गाना जिसकी फरमाइश आपने की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल

सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। फिल्म है प्रेम रोग। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की। गीत लिखा संतोष आनंद ने और उसे सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्यारा सा गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: फिल्म प्रेम रोग के इसी प्यारे से नगमे के साथ ही व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत अब समाप्त होता है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जो आधारित था व्हाट्सएप फरमाइशों पर। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास से जुड़ी समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बातें आसपास की।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

कार्यक्रम बातें आसपास की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदूषण मुक्त अयोध्या की। जी हाँ, अपनी नव विकसित दिव्य व नव्य आज की अयोध्या की चर्चा पूरे विश्व में है। श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं की भीड़ अपनी अयोध्या में आ रही है, जिसके कारण कई तरह की चुनौतियां प्रशासन और स्थानीय लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। उन्हीं में से एक है प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन। प्रदूषण प्रमुख रूप से तीन प्रकार का होता है, जल, वायु और मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण। जब पीने के पानी में और उसके स्रोतों में गैर जरूरी वस्तुएं जाने अनजाने मिल जाती हैं, जिससे वह पानी मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं के उपयोग हेतु नहीं रह जाता है, तो इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक इसी तरह वायु और मृदा यानी मिट्टी के बारे में भी कहा जाता है। किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अयोध्या में रहने या अयोध्या में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि निश्चय कर ले कि किसी भी प्रकार की गंदगी जल, वायु या मृदा में वह सीधे या अपरोक्ष रूप से नहीं मिश्रित करेगा, तो हमारी आपकी अपनी अयोध्या स्वयं ही प्रदूषण मुक्त रहेगी। हालांकि स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे हमारी अयोध्या को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके, लेकिन ये प्रयास हमारे आपके व्यक्तिगत सहयोग के बिना बेमानी हो जाएंगे। हमारी अयोध्या को पॉल्यूशन फ्री बनाना हम सबकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही आज की आवश्यकता भी है। तो आइए हमारी अयोध्या को, अपनी अयोध्या को, आपकी अयोध्या को और भी बेहतर बनाएं और प्रदूषण मुक्त बनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम बातें आसपास की में हम आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म हम आपके हैं कौन का। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा देव कोहली ने और उसे सुरों से सजाया है राम लक्ष्मण ने। प्यारा सा गीत आप तक।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम बातें आसपास की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित हैं। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए।

सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 जीएसटी के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 जीएसटी के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम बातें आसपास की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस वक्त आपसे रूबरू आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से। गीत लिखा समीर ने और उसे सुरों से सजाया है नदीम श्रमण ने। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से नगमे को।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बातें आसपास की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी का यह प्यारा सा गीत, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता की आवाज में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और सुरों से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनिए यह प्यारा सा गीत।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म क्योंकि से हमने लिया है। गीत लिखा है समीर ने और उसे सुरों से सजाया है हिमेश रेशमिया ने। ये प्यारा सा गीत जा रहा है आप तक।

0: फिल्म है, क्योंकि किसी प्यारे से गीत के साथ ही आसपास से जुड़े समसामयिक जानकारियों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातें आसपास की से अपने इस दोस्त विवेक सोनी को अब दीजिए इजाजत।
1: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
2: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
1: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
2: और साथ में अपना नाम, पता
1: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
2: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
3: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।

श्रोताओं एक आवश्यक सूचना। कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के संबंध में दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 73-76-80-40-90। नंबर एक बार पुनः सुन लें, नंबर है 73-76-80-40-90। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। सूचना समाप्त हुई। और अब एक और सूचना समनुदेशती उद्घोषक पैनल 2026 हेतु। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं। आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को ₹354 GST के साथ और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹266 GST के साथ आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सोमवार से शुक्रवार तक प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है और अब चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गई। वो इस दुनिया से चली गई। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच। अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए

मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी, फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

स्कूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो, जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे, वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्ची हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर

इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरव, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्हे नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है।
मेरी पूछ

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6

पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई।

झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश के बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ दे हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा, हम सब ने अपनी सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।

जब वो रुका तो उसकी सोनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कस कर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद

आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भगर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिरठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

पेशे खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बेहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बेहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहाँ बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहाँ खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहां तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका है शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है, जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हो लेकिन जो प्यार है बीच का प्यार है वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: Sum up to up.
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम। वंदे
0: सुनना न भूल।

लिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं अवधी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग।

स्वागत अभिनंदन सभी सुनने वालों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लोक रंग। और इस कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अंजू मिश्रा और सखियों के स्वर में गाए इस अवधि लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। निर्धारित योग्यता और अर्हताएं इस प्रकार हैं: आवेदक की आयु दिनांक 1 मई 2026 को 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी का निवास स्थान अयोध्या नगर निगम सीमा के अंदर होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और समसामयिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी को जीएसटी के साथ ₹354 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को जीएसटी के साथ ₹266 आवेदन शुल्क देय होगा। विस्तृत जानकारी और निर्धारित आवेदन पत्र आकाशवाणी अयोध्या से दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में, यानी सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं अवधी लोक गीतों से सजा कार्यक्रम लोकरंग, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला अवधी लोक गीत।

0: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के संबंध में दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएम द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 73-76-80-40-90। दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Hello?
4: Hello? No. Telephone number.
5: My number is...
6: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
7: नहीं अछूता हो जिस...
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लोक रंग। और अब आपके लिए लाए हैं विमला कठोरिया और सखियों के स्वर में ये विवाह लोकगीत।

श्रोताओं आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद यानी ठीक 1 बजे से कार्यक्रम होगा हेलो अयोध्या। नंबर आपको बता देते हैं ताकि हमारे नए श्रोता भी शामिल हो सके इस कार्यक्रम से। तो इस कार्यक्रम का नंबर है 73-76-80-40-90। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 73-76-80-40-90। और अब आपके लिए लाए हैं कार्यक्रम में अगला अवधि लोकगीत विमला प्रज्ञा पाठक और सखियों के स्वर में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे अवधि लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। 101.9 MHz FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब हमारे श्रोता सुने अपना कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: स्वागत है सभी सुनने वालों का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो अयोध्या। और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को तबस्सुम का बहुत नमस्कार। और हमें है इंतज़ार अभी आप सभी श्रोताओं का अपने इस कार्यक्रम में। देखते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं लाइन पर। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: हाँ मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना शुभ नाम बताइए।
1: हेलो
0: जी। हेलो।
1: हेलो मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी मैं अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रन्ना, देवकाली रोड, अयोध्या।
0: जी अर्जुन जी, क्या करते हैं आप?
1: जी दुकान है पान की मेरी।
0: अच्छा अच्छा, और गाना सुनते हैं?
1: जी जी, गाना तो आपका प्रोग्राम चलते रहता है, रेडियो चल रहा है।
0: जी तो पूरे टाइम चलता रहता है रेडियो?
1: जी मैडम।
0: घर में और सब लोग भी सुनते हैं कि खाली आप सुनते हैं?
1: हाँ, सब सुनते हैं प्रोग्राम। मेरे पास दो रेडियो रखा है मैडम, एक घर पे है एक दुकान।

0: पे है।
1: जी जी, तो जी, आपकी बात से लग रहा है कि आप हमारे काफी पुराने श्रोता हैं।
0: जी जी,
1: और आपको यहाँ से प्रसारित होने वाले कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
0: आपका प्रोग्राम अभी जो खत्म हुआ है अवधि लोकगीत,
1: जी जी,
0: ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे गीत आते हैं।
1: जी जी,
0: ये भी अच्छा लगता है।
1: तो
0: जो आपका प्रोग्राम आता है,
1: जी
0: हाँ,
1: किस फिल्म का?
0: सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं मैडम,
1: बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
0: फिल्म है आप आई बाहर आई।
1: जी जी, आप आ गए। जी ये सच बात है, कोई
0: क्यों गाए।
1: ठीक है, आपको ये गीत हम सुनवा देते हैं। तो बहुत आपका धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: जी मैडम, जी जी।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे श्रोता अर्जुन जी, तो इनकी पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आई से ये गीत।

0: हम भी एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है हमारे श्रोता लाइन पर, चलिए इनसे करते हैं बातें। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: स्वाति सिंह, अंबर पे मनकापुर जिला गोंडा से बात कर रहे हैं।
0: जी स्वाति जी, आप हमारी रेगुलर श्रोता हैं।
1: जी मैम।
0: जी, आपसे पहले भी बात हो चुकी है हमारी।
1: जी मैम, इस बार दूसरी बार बात हो रही है आपसे।
0: जी जी, स्वाति जी क्या करती हैं? याद तो नहीं है मुझे कि आपने क्या बताया था, तो एक बार फिर से पूछ लेते हैं।
1: आईटीआई कर रहे हैं और घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं।
0: अच्छा, घूमने फिरने का शौक है आपको?
1: जी मैम।
0: अच्छा लगता है ना घूमना फिरना?
1: जी मैम, पेंटिंग डिजाइनिंग का, सिलाई कढ़ाई सब में शौक है मैम।
0: तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोग घूमने फिरने जाते

0: हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो चीज़ खाते हैं कुछ भी उसका रैपर वहीं गिरा देते हैं, कागज़ में कुछ खाया पिया तो उसको, या पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं, तो कितना ख़राब लगता है ना।
1: जी मैम, जैसे कुछ लोग की आदत होती है इधर उधर फेंकना, जितने से डस्टबिन लगा होता है उसमें डाल दें, या अपने बैग तो साथ में रहता है अपने बैग में रख लें, कहीं भी आगे डस्टबिन लगा उसमें डाल दें। हम
0: हाँ
1: अपने
0: ये
1: ऊपर
0: तो
1: होता है, जैसे अपने आदत के ऊपर।
0: जी, आदत जैसी हम लगाएंगे वैसे होगा। और पहली बात तो ये है कि देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, या अपना शहर है या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी मैम, साफ सफाई करना हर जगह की बहुत जरूरी है, चाहे जहाँ रहते हैं या कहीं भी जाते हैं या कहीं भी रहें, तो साफ सफाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी, और साफ सफाई से अपना भी फायदा होता है और दूसरों का भी फायदा होता है। क्यों स्वाति जी,
1: जी मैम, सही बात है मैम।
0: किस फिल्म का गीत आज आपको सुनवा दें?
1: सरगम फिल्म का सुनवा दीजिए,
0: कौन सा गाना?
1: डफली वाले डफली बजा।
0: ठीक है, आपको ये गीत हम सुनवा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।

0: और अब इस कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी

0: शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़िया, अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: फिर से स्वागत है सभी सुनने वालों का। कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या, और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन है। हेलो, नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? जी जी जी तैनात। तो आप आकाशवाणी अयोध्या के सारे कार्यक्रम सुनते हैं? जी, शुक्रिया आपका। और ये बताइए कि आपके यहाँ कैसा मौसम चल रहा है, कैसा जो है इस समय?
3: यहाँ मौसम ठंडा है।
2: ठंडा मौसम है तो, और रेडियो आप सुन रहे हैं?
3: हम बराबर।
2: जितेंद्र जी क्या करते हैं आप? जी जी, चलिए बहुत अच्छा है, आप शिक्षा बांटने का, शिक्षा देने का। जी जी, चलिए आज आपको किस फिल्म का गीत सुना दें?
3: मोहरा का गाना सुना दे।
2: मोहरा का कौन सा गाना?
3: नमोतियों का।
2: जी, न कजरे की धार। ठीक है, आपको आपकी पसंद का।
3: छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बात कर लीजिए।
2: जी जी। हेलो,
4: नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा, आपका क्या नाम है?
4: जनेन्द्र पांडे।
2: अरे वाह, आप अभी कितने बड़े हो, छोटे से हो? जी, पढ़ने जाते हैं आप?
4: हाँ।
2: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर फोन लगाइएगा, ठीक है?
4: ठीक,
2: बाय।
4: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते बेटे। तो आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोता की पसंद पर ये गीत।

0: सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अभी लगभग 12 मिनट का सफर बाकी है इस कार्यक्रम में, तो हमारे सभी श्रोता जुड़े जो भी जुड़ना चाहते हैं। और हम देखते हैं हमारे कौन से लकी श्रोता हैं लाइन पर। हेलो
1: जी, हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो
1: जी, जी
0: जी
1: बोल रहे हैं
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: मोहम्मद राजिक मेरा नाम है
0: जी। राजिक जी, आपने कहाँ से फोन किया है?
1: अयोध्या से, जिला अयोध्या।
0: अयोध्या से फोन किया है, तो क्या करते हैं राजिक जी?
1: कुछ नहीं करते हैं, ब्लाइंड पर्सन है।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आपके हौसले को सलाम है कि आप रेडियो सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं और आपने फोन भी लगाया है। किस फिल्म का गीत आज आपको सुनवाएं हम?
1: अक्षरलम का कोई एल्बम सुना दीजिए मैम।
0: एल्बम का तो गीत नहीं बजेगा, इसमें फिल्मी गीत बजेगा।
1: अक्षरलम का ही सुना दीजिए, कोई भी।
0: कोई भी तो बताइए आप, कौन सा आतिफ असलम का गाना सुनेंगे?
1: कोई भी बजा दीजिए मैम, सारे गाने अच्छे हैं आतिफ असलम के।
0: जी जी
1: जी।
0: और आपने पढ़ाई की है?
1: जी, हर क्लास तक की है।
0: अच्छा अच्छा, और घर में कौन कौन है?
1: घर में हमारे मम्मी पापा हैं, भाभी हैं, भाई हैं।
0: जी, पहली बार आपका फोन लगा है?
1: जी, लग चुका है दो बार और पहले भी।
0: जी
1: जी,
0: तो जो लोग शिकायत करते हैं कि फोन नहीं लगता है,
1: जी
0: उनसे क्या कहेंगे?
1: पाँच तारीख को वही 9:15 से 9:45 से 10:10 के बीच में फोन 3 बार लगाया। अब गणेश सर की ड्यूटी थी।
0: हाँ, तो बात हुई आपकी?
1: बोल भी रहे थे मगर उधर से पता नहीं कैसे क्या हुआ, बस काट दिए 3-3 बार।
0: नहीं, काटे नहीं होंगे, कट गया होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि लग जाता है फोन और जो है रिसीव नहीं हो पाता है किसी वजह से, है ना?
1: जी
0: जी, तो आपका तो गीत मिल नहीं पा रहा है, तो आपको कोई और गीत सुनवा दें?
1: जी, सुना दीजिए।
0: बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए, फिर फोन लगाइएगा राजीव जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आपके लिए लाए हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता हैं लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक श्रोता देखते हैं कौन से हमारे श्रोता हैं। हेलो
1: नमस्ते
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: राधेश्याम
0: जी, आपका फोन लग गया है तो खुश हो जाइए क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़ने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत सालों से प्रयास करते हैं लेकिन नहीं फोन लग पाता है, तो आप लकी श्रोता हैं।
1: तीन चार बार लग चुका है।
0: आपका लग चुका है? अरे वाह, आप बहुत लकी हैं। इसका मतलब कैसे लग जाता है फोन?
1: अरे मिलाते हैं तो लग जाता है।
0: अच्छा, मिलाते हैं तो लग जाता है? नहीं, सभी लोग मिलाते हैं फोन लेकिन नहीं लग पाता है। और लेकिन हम तो यही कहेंगे, आप भी कह दीजिए सभी श्रोताओं से कि निराश बिल्कुल ना हो, फोन लगता है। इसीलिए तो जी, इसीलिए तो अब हर रोज आपका ये सजीव फोन इन कार्यक्रम रहता है ताकि कोई भी श्रोता मतलब मायूस ना हो, शिकायत ना हो उनको कि हमारा फोन नहीं लगता है। आज किस फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: फूल और कांटे का।
0: फूल और कांटे का कोई भी गीत सुनवा दें?
1: हाँ, कोई भी गीत सुनवा दें।
0: ठीक है, आपको आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, धीरे धीरे हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक। तो देखते हैं हमारे अंतिम कॉलर कौन है इस कार्यक्रम के। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मण प्रजापति।
0: लक्ष्मण जी, आपने कहाँ से फोन लगाया है?
1: एयरपोर्ट अयोध्या धर्मपुर।
0: जी जी, अयोध्या से आज कई श्रोता शामिल हो चुके हैं इस कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको इस कार्यक्रम से जुड़ के कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
0: तो आज किस फिल्म का गीत आपको सुनवा दें?
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनेंगे, किस फिल्म का?
1: ये कुटी कुटी गाना जो है रे।
0: हमारे इन श्रोता ने जो है जो पसंद की थी, तो उस गीत को आपको सुनवा देते हैं श्रोताओं।

श्रोताओं, चलते चलते इतना ही कहेंगे कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और अपनों का ख्याल रखें। दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से तबस्सुम को। नमस्कार, लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित कार्यक्रम।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

स्वागत अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में बहुत सारे कमेंट्स हमें मिलते हैं हर रोज हमारे श्रोताओं के, तो देखते हैं श्रोताओं आज के हमारे पहले श्रोता कौन से हैं जो शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम से। तो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हमारे श्रोता हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं दिलशाद हुसैन, नई बस्ती गंज डिंडवारा से शामिल हो रहे हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। अगले श्रोता हैं मजनू का टेला से कमल बालूजा, अशोक वर्मा भी शामिल हो रहे हैं लेकिन आपने अपना पता नहीं लिखा है तो पता भी लिखें और साथ ही साथ अगर सुविचार लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी और हमें इंतजार रहता है आपके सुविचारों का भी। और शामिल हो रहे हैं अगले श्रोता सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, कालका से हैं शुभचंद बजाज, हरदोई रोड लखनऊ से हैं मास्टर खिल्लू परवेज। अगले श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, रावर करनाल से हैं ज्ञानभूषण शर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हैं अरविंद कुमार, कराची से हैं हमारे श्रोता अमर रमेश कुमार खत्री, और अगले श्रोता हैं किशोरनगर अमरावती से हीरामन शेंडे, नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल शाहड़े, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मीणा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा मीना, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बाल कृष्ण शर्मा, मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, जसपुर उत्तराखंड से कमेंट हमें मिली है रियासत हुसैन सिद्दीकी की, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हमारे श्रोता हैं अरुण कुमार मालवीय दर्द, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से हैं सुरेश चौरसिया, किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, और चंडीगढ़ से हैं सतीश आनेजा, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, गंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी, गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार, श्री गंगानगर राजस्थान से हैं डॉक्टर बनवारी जयपाल, बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, बेडी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर, जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, सोलापुर महाराष्ट्र से हैं विष्णु मस्कीन, मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी। हमारे एक श्रोता ने

लिखा है, जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले किस्मत से मिलते हैं। सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है लेकिन नज़रिए का नहीं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम जिंदगी है। कम लोग हों पर अपने हों, जिंदगी तमाशा थोड़ी ना है। जो भीड़ चाहिए, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। ये विचार लिखे हैं रवि कुमार राहुल ने, कस्बा बराड़ा, अंबाला, हरियाणा से। बहुत अच्छे आपके विचार थे, और होता ही है, लेकिन फिर भी हम अच्छा करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानियत का यही तकाजा है कि कर भला तो हो भला। और अगले श्रोता हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी। आज आप लिखते हैं कि आज अभिनेता तलत महमूद जी का स्मृति दिन है, तो इन पर फिल्माया गीत सुनना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और अगले श्रोता हैं सादुर शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़। आपने लिखा है, महान गायक तलत महमूद साहब को याद करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी 9 मई 1998 को तलत महमूद साहब हम सबको छोड़कर हमसे दूर चले गए, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमारे लिए अमर हो गए। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं इनकी आवाज़ में फिल्म बाबुल का ये गीत। इनका साथ दे रही हैं इस गीत में शमशाद बेगम। गीत है शकील बदायूनी का और संगीत नौशाद का। तो आइए सुनते हैं तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में ये गीत।

अपने इस कार्यक्रम से फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा का पोस्टर मिलेगा। आपको इस पोस्टर के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है अपना नाम, पता, अपनी पसंद का गीत, फिल्म का नाम और अपने सुविचार भी, क्योंकि हमें रहता है इंतज़ार। और हम तो बार बार यही कहते हैं कि श्रोता हमारे शामिल हों तो अपने सुविचार के साथ भी शामिल हों। और देखते हैं फिर हमारे अगले श्रोता कौन से हैं। गांव भटनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से श्रोता हैं ईश्वर लाल मेहर। अगले श्रोता हैं दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु टेलर। बाजार रोड मुंगेसापुर से खैगांव खंडवा मध्य प्रदेश से हैं कैलाश फूल माली। कमर कॉलोनी बड़वाह खरगोन मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण श्रीमाली। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं श्रोता सैयद मसरूर। मानपुर साबिस जिला मुरादाबाद से हैं शेख जियाउर रहमान। नलेश्वर नगर नरवेल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं पीएस नावकर। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी। सहारनपुर से हैं श्रोता राधा नामदेव। मोताला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं विजय सुरलकर। गंज डुंडवारा से हैं आफ्ताब अंसारी। राजनांदगांव से हैं नारायण लाल साहू। चंडीगढ़ से हैं सतीश आनेजा। मुरादाबाद से हैं शेख जियाउर रहमान। कस्बा बराडा जिला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दाता सिंह शेखावत। ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता। धन्वंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म एक फूल दो माले से, आवाज है आशा और मोहम्मद रफी की, गीत है प्रेम धवन का और संगीत रवि का।

0: मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। कार्यक्रम है कुछ तुमने कहा, फेसबुक के माध्यम से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से। देखते हैं कौन से श्रोता हैं। अब गांव लोहड्डा जिला बागपत से हमारे श्रोता हैं जगमोहन सिंह प्रजापत। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं PS नावकर। नवा गांव मुढ़ईपुर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं सोहन लाल साहू। बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हैं अरुण कुमार मालवीय दर्द। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद वंडलकर। नांदेड़ ताला महाराष्ट्र से हैं शंकर लाल जायसवाल। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर। सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजभिये। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं अंकुश अरोड़ा। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी। गांव जाखोस से हैं शंभू दयाल खटक। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता। गंज डुंडवारा से हैं शमशुल कुमार कमर राही। पंजाब से हैं मेका विर्क। लसुडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव दिव्या। कलानौर से हैं नरिंदर शर्मा। रावण जिला करनाल से हैं विनोद लखनपाल। गुलवालो तहसील आलोट रतलाम से हैं कृपाल सिंह परिहार। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हैं मुकेश कश्यप। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल। गांव बांडीवाला फाजिलका से हैं ओम बगड़िया। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब। ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा। लगान पंडिया छत्तीसगढ़ से हैं राघव बघेल। नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा। आप सबके लिए हम लाए हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म परदेश से। आवाज है कुमार सानू की, गीत है आनंद बख्शी का।

कार्यक्रम के अंत में शामिल होने वाले हमारे श्रोता हैं गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हैं मोहम्मद फरमान, हीरावली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, खोखरा वाली श्रीगंगानगर से हैं विनोद बारासा, शिवाजी नगर से हैं महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, अंबई अंबई से हैं छत्रपति, संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, हनुमानगढ़ से राजस्थान से हैं रजाक मोहम्मद, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, कस्बा उगहती से हैं धीरज गुप्ता, चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम से हैं छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, पुरानी भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोडखे, पटेल नगर मलोट से हैं रमेश कुमार, झारखंड से हैं जीवन विश्वकर्मा, हरियाणा से हैं रमेश कुमार कंबोज, वड़िंगखेड़ा पंजाब से हैं आर कुमार, भाटापारा से हैं के आर साहू, जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ से हैं बल

करण वर्मा आप सबके लिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दोस्ती से। इस गीत को अपनी सुमधुर आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद रफ़ी के इस सुरीले से गीत के बाद हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भजन गीत गजल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: खैर मकदम करते हैं आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतांजलि। और इस कार्यक्रम की पहली पेशकश है तलत अजीज की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: के शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
3: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
4: सुनिए,
5: कहिए, कहिए,
3: सुनिए। भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक, आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: और भाई साहब क्या हाल है?
2: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
1: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
2: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
3: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीतांजलि। और अब आइए सुनते हैं एक गैर फिल्मी गीत अदनान सामी की आवाज में।

0: अदनान सामी के गाये से गैर फिल्मी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
2: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: श्रोताओं, आपको एक सूचना दे देते हैं। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के संबंध में दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में रहेंगे डॉक्टर SM द्विवेदी। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नंबर होगा 7376-8040-90। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमित शुभेंदु अधिकारी

0: ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: শপথ গ্রহণ কি প্রক্রিয়া কে অনুসার সবসে পহলে শুভেন্দু অধিকারী নে মুখ্যমন্ত্রী কে রূপ মে শপথ লি, উসকে বাদ এক এক কর মন্ত্রী কে রূপ মে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্র পল, অশোক কীর্তনিয়া, খুদিরাম টুডু আর নিশিত প্রামাণিক নে শপথ লি। আকাশবাণী সমাচার কলকাতা সে কাশফিন নাহার।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक

0: दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर विस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में

0: इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिल्ली से समाचार के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप हैं आकाशवाणी अयोध्या के साथ एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिसे आप प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। अब हमारी बहनें सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत, जिसके अंतर्गत हर शनिवार को आप सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161-877-347।
2: कार्यक्रम के सफर में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैनो आज शनिवार को आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो सहेली होता है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जल्दी से फोन उठाइए और मिलाइए वही जाना पहचाना नंबर 7376804090 यानी 7376804090 और सीधे हमसे जुड़ जाइए। आज का हमारा विषय है मूक जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य।

0: मैंने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के 2 शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 में यह 9 मई यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। 2026 की थीम है हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। यह विषय पक्षियों के संरक्षण में जन विज्ञान के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, उनके महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी आधिकारिक शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र की संधियों के द्वारा की गई थी। मानो प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तय करते हैं और रास्तों में कई खतरों का सामना करते हैं। यह दिवस उनके आवासों को बचाने के लिए प्रेरित करता है। और मानो एक खास बात और है पक्षियों की कि यह बीजों के प्रसार और परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस प्रकाश प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण पक्षियों को होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करता है। बनो देखिए कोई कॉलर हमसे जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: हेलो
0: जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं से बोल रही हूँ।
0: कहाँ से? आप अपना रेडियो सेट पीछे कर दीजिए, थोड़ा दूर कर दीजिए, तब बताइए।
1: परसरामपुर बस्ती।
0: परसरामपुर बस्ती से जी, क्या नाम है आपका?
1: आरती।
0: आरती जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो आज का विषय हमारा आप जान रही हैं? हाँ, मूक जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी आप?
1: पानी पर रखना जरूरी है, अनिवार्य है। जानवरों की रक्षा भी करना चाहिए। जो बहुत लोग आंख मदिया का सेवन करते हैं, जानवरों को काट देते हैं, इसको बंद कर देना चाहिए मैम
0: जी। बहुत अच्छी बात,
1: पाप भी है और नुकसान भी करता है।
0: तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाती हैं कि ये हमको चिड़ियों के प्रति या पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए?
1: बच्चों को भी सिखाती हूँ कि प्यार से व्यवहार करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए जानवरों को।
0: जी जी जी आरती, आपने बहुत अच्छी बात की और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मनो, हमसे आरती जुड़ी हुई थी अभी बस्ती से। उन्होंने बताया कि देखिए, जो हम पक्षियों को मारते हैं या काटते हैं या उनको खाते हैं, ये चीज़ गलत है और वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षियों को होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक ज़रूर होना चाहिए। जब पक्षी सर्वोत्तम परिस्थितियों एवं आवास की खोज में सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो इसे प्रवास कहा जाता है। और ऐसे समय पक्षियों को यात्रा के दौरान थकान, प्यास लगना या भोजन की कमी से कभी कभी वे मर भी जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोगों का ये दायित्व तो है, ये कर्तव्य है कि उन पक्षियों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और इस गर्मी के मौसम में उनके दाने पानी का ज़रूर इंतजाम करना चाहिए। और बहनों देखिए कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो सुबह शाम पक्षियों के लिए जैसे दाने का प्रबंध कर लेना चाहिए या किसी बर्तन में पानी जो है, चाहे छत पे, चाहे बालकनी में या आपके बाग बगीचे में, जहाँ भी सुविधा हो आपको, इसके लिए ज़रूर प्रबंध करना चाहिए। और आपने बहनों ये देखा होगा कि बहुत पहले हम लोगों के घरों में गौरैया आती थी और हम लोग बड़े उससे जो है उसको चावल या रोटी का दाना डाल देते थे, चावल बना हुआ पका चावल भी डाल देते थे और गौरैया बड़े प्रेम से ची ची करके आके खा लेती थी। लेकिन आजकल गौरैया की प्रजाति जो है विलुप्त होती जा रही है, तो हम सभी को ये चाहिए कि ये प्रजाति विलुप्त ना हो और ये हमारे बीच में बने रहें, क्योंकि पशु पक्षी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे

0: पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। तो हम सबका दायित्व है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और अच्छे से उनको देख रेख करें। मैंने एक चीज़ और है कि पक्षियों की चहचहाहट जो होती है वो सुबह के समय बहुत अच्छी लगती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब सुबह होती है सूर्योदय से पहले पक्षियों की चहचहाहट हमें जगा देती है और बहुत कुछ हमको सिखाती भी है ना बहनों। पक्षी देखिए सुबह बहुत सुबह भोर में ही उठ जाते हैं और वो आकाश की सैर करने लगते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करते हैं। देखिए बहनों हमसे कोई कॉलर जुड़ गई है। हेलो।
1: हाँ हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं फैजाबाद से बोल रही हूँ।
0: फैजाबाद से, क्या नाम है आपका?
1: आकृति।
0: आकृति जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: आज का विषय आप जान रही हैं?
1: जानवरों और पक्षियों के प्रति हमारी कर्तव्य।
0: जी जी, कार्यक्रम को आप बहुत ध्यान से सुन रही हैं, है ना आकृति?
1: तो
0: क्या कहना चाहेंगी आप आकृति जी?
1: हम यही कहना चाहेंगे कि हम उनके प्रति दया सहानुभूति और प्रेम का भाव रखें, उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था करें, गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए छत का दाना पानी रखें, आवारा पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें।
0: जी,
1: पशु क्रूरता का विरोध,
0: हाँ,
1: किसी भी जानवर के साथ हिंसा मारपीट या अत्याचार ना करें, ऐसे कृत्यों को रोकना भी हमारा कर्तव्य है।
0: हाँ जी, इसके लिए कई अधिनियम बने हुए हैं या पेटा जो एनजीओ है वो भी इस पर बहुत काम कर रही है, तो हमें उनको सूचित भी करना चाहिए, है ना, कि अगर कोई जानवर या पक्षियों को मार रहा है या किसी तरह की हिंसा कर रहा है तो हमको उसे सूचित करना चाहिए। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो पुलिस के नंबर 100-112 पर भी आप उसको कॉल कर सकती हैं, है ना। पुलिस के नंबर पर भी आप कॉल कर सकती हैं कि फला जगह ऐसा हो रहा है, तो
1: ये सूचित कर सकते हैं पुलिस को या फिर उसके मालिक को जानवरों के।
0: हाँ, ये बात सही कह रही हैं कि आप जो है उसको सूचित कर सकती हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम पक्षी जो है वो बेजुबान होते हैं, तो
1: इनके अलावा जंगलों को और घोंसलों को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी बिल्कुल, जो हम पेड़ों को वनों को काटते चले जा रहे हैं इससे उनके घर जो है खत्म हो जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी, इससे पृथ्वी का संतुलन भी तो बिगड़ता है।
1: इनका पालन जो हमारा घर है, जो जैसे इनकी भावनाएं होती है हमारी भावनाएं होती है।
0: जी बिल्कुल, ये अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान पंछी बहुत कुछ समझते हैं और ये
1: परिवार है दुनिया।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आकृति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहनों देखिए, आकृति जी ने बहुत अच्छी बात की, ये फैजाबाद से बोल रही थीं और इन्होंने बताया कि इनके परिवारों को बचाना चाहिए और वनों को भी बचाना चाहिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और आइए बहनों सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर आपसे

0: भनो, अभी आपने जो गीत सुना वो फिल्म था चोरी चोरी से, और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। भनो, आपसे बात हम अभी और भी आगे करेंगे, लेकिन मिलते हैं थोड़े से अंतराल के बाद।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बधाई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com AYODHYA AKASHVANI @

0: आइकन FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: मनो देखिए हमसे कोई कॉलर जुड़ गई हैं और इंतजार कर रही हैं। हेलो
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते जी, कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैम बीकापुर से बोल रही हूँ। हमारा नाम मैम सुमन यादव।
2: सुमन यादव जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं सुमन जी?
3: हम घर पे रहते हैं।
2: अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई आपकी?
3: जी मैम।
2: चलिए सुमन जी, आज का विषय तो आप जान रही हैं ना, पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, क्या कहना चाहेंगी आप?
3: हम तो मैम कहेंगे कि पशु पक्षी को जो बहुत से लोग हैं मार पीट के वो करते हैं, तो कहते हैं कि मैम देखो मारो मारो ना, उनको पक्षियों को नहीं मारना चाहिए
2: जी।
3: उनके लिए दाना, जैसे दाना भी फेंके चुगने के लिए और पानी में, मैं तो करती हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है
3: जी मैम। अब मैं यही कहूंगी मैम कि पक्षियों को जो अनबोल जानवर हैं जो उनको मारना नहीं चाहिए।
2: बिल्कुल सही बात है, हिंसा नहीं करना चाहिए।
3: बहुत से लोग है ना मार के मतलब मार देते हैं, उनको मारने से क्या फायदा, वो तो अनबोल है ना।
2: कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर कोई पक्षी घायल ही हो गया है तो आप क्या करेंगे सुमन जी?
3: क्या मैम?
2: अगर कोई पक्षी घायल हो गया है, आपके सामने दिख रहा है कि वो चोट लग गई है उसे, तो आप क्या करेंगी?
3: अगर मैम हम तो देख अगर हम देख लेंगे अगर किसी को मारते हुए
2: जी,
3: तो हम तो मैम या तो फोन करेंगे 112 पे, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो मैम करेंगे उसको बचाएंगे।
2: नहीं वो तो आप करेंगी, लेकिन उस पक्षी के प्रति आपकी संवेदनशीलता है तो उसके लिए आप क्या करेंगी?
3: क्या मैम?
2: उस पक्षी के लिए जिससे चोट लगी है, जो गिर गया है, उसके लिए आप क्या करेंगी?
3: मैम 112 पे फोन करेंगे।
2: देखिए वो तो आप सुमन जी फोन करेंगी, लेकिन उसके लिए उसकी दवा पानी कुछ आप करेंगी ना, यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। चलिए सुमन जी, आपने आपने मुझे ये कहना था कि आप उस पक्षी के जो है वो सेवा करिए कि जैसे उसको चोट लग गई है दवा पानी कर दीजिए, ये मतलब हम कह रहे थे आपसे। हाँ चलिए सुमन जी, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में आने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहनों, सुमन जी ने हमसे बीकापुर से बात किया और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मारना नहीं चाहिए। और एक बात और बहनों कि बच्चों को चिड़ियों और पक्षियों के प्रति भावात्मक रूप से अच्छा व्यवहार करने के लिए उनको विकसित करना चाहिए, बताना चाहिए और इसके लिए उनको प्रकृति से जोड़ना चाहिए। छोटे बच्चों को प्रेम सम्मान और संवेदनशीलता सिखाने के लिए आप कई तरीके अपना सकती हैं। जैसे पहली बात तो यह है कि आप खुद ही उदाहरण बन सकती हैं। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं, तो यदि आप स्वयं पक्षियों के प्रति दयालु रहेंगे, दाना पानी देंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। देखिए हमारी कोई कॉलर जुड़ गई है। हेलो।
4: हेलो नमस्कार मैम।
2: नमस्ते जी, कहाँ से बोल रही हैं?
4: सपना सिंह फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अयोध्या।
2: वेरी गुड सपना जी, आप अयोध्या से बोल रही हैं, बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या करती हैं सपना जी?
4: मैं टीचिंग भी करती हूँ, राइटर भी हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है भाई, आप लिखती भी हैं, तब बहुमुखी प्रतिभा की आप धनी हैं। आज का हमारा विषय है सपना जी, मूक जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति हमारा कर्तव्य, क्या कहना चाहेंगी?
4: मैम ये तो बहुत बड़ा और सबसे प्रथम कर्तव्य यही है कि जैसे लोग अपना दर्द समझते हैं ना, वैसे पशु और पक्षियों का भी दर्द समझना चाहिए मैम।
2: बहुत अच्छी बात कही जी, हमको उनकी संवेदनशीलता जो है होनी चाहिए उनके प्रति, है ना?
4: यस मैम, जैसे कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, आपने बताया कि जो वातावरण होता है वो पक्षियों की वजह से ही संतुलित रहता है।
2: जी जी,
4: तो मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आपने खुद ही बता दी, बस इतना ही कहूंगी कि जैसे लोग अपना ख्याल रखते हैं ना, वैसे पशु और पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए।
2: थैंक यू सो मच सपना, आपने हमारे लिए ये बात बोली। और देखिए जो है आप जैसे श्रोता अगर हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो हमारा कार्यक्रम और भी अच्छा हो जाता है।
4: अरे मैम इतनी अच्छे से आप जानकारी दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मैम।
2: थैंक यू सपना, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज़, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी

0: नमस्ते
1: नमस्ते। देखिए मैनु, सपना ने बहुत अच्छी बात की कि हमको जो है उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और वो बेजुबान जो पक्षी हैं या पशु हैं उनके प्रति हमको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए। पक्षियों के पास जाते समय मैनु हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम चिल्लाएं नहीं, बल्कि शांत होकर उनके व्यवहार का अवलोकन करें कि वो करते क्या हैं। और बहनों, उनकी गतिविधियां देखकर बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर से जब पक्षी या चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है या उड़ना सिखाती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज अपने बच्चों को भी दिखाइए जिससे वो दयालु बने और साथ ही साथ वो सीखें भी। और बहनों, पक्षियों के से मतलब प्यार से बातें करें तो वो आपकी भाषा भी समझते हैं। तो इसके लिए तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए और उनके घोंसलों की सुरक्षा करिए। बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि अगर घर के आसपास कोई चिड़िया घोंसला बनाए तो उसे ना तो छुएं और ना ही परेशान करें। ये हम बड़ों को भी चाहिए, और बच्चों को ये भी समझाएं कि घोंसले में अंडे हो सकते हैं इसलिए उसको कदापि वो छुएं नहीं। और मैंने एक बात और कि पुरानी प्लास्टिक की बोतलें हों या नारियल के जो खोल होते हैं उसमें बर्ड फीडर जिसे दाना खिलाने का डिब्बा हम कह सकते हैं उसको हम पेड़ पर लटका सकते हैं तो उसमें जो है वो चिड़िया आएगी। और मैंने एक चीज़ और कि बच्चों में संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए हम सभी को ये चाहिए कि जानवरों और पक्षियों के पर आधारित कुछ कहानियाँ सुनाएं जिससे जो है वो बच्चे कुछ सीखे, जैसे प्यासी कौवा है या उसकी दोस्ती की कहानी। तो ये सब बच्चों में बहुत असर डालती है। और बच्चों को ये भी बताएं कि पशु पक्षी बोल नहीं सकते लेकिन उन्हें भी हमारी तरह भूख, प्यास, डर और दर्द का एहसास होता है, बिल्कुल हमारी तरह। तो हम उसका जो है ख्याल रखें और जो कुछ भी हम उनके प्रति कर सकते हैं वो ज़रूर करें। देखिए बहनों, हमारी कोई कॉलर जुड़ गई है। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रही हैं?
2: हेलो
1: जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ जी, आप अपना रेडियो सेट पीछे रखिए। हाँ, आप बोलिए। देखिए, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है बहनों, और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बेजुबान पक्षियों के प्रति या पशुओं के प्रति हम सभी को ये होना चाहिए कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये ज़रूर सिखाएं। और बहनों, एक चीज़ और है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली पक्षी या घोंसले या अंडों को परेशान नहीं करेगा, ना तो उन्हें लेगा और ना ही उन्हें नष्ट करेगा या परेशान करेगा, और या ऐसे घोंसले या अंडे अपने कब्जे में नहीं रखेगा। बहनों, इन सब के लिए धाराएं हैं, अधिनियम है, तो उस पर ये जो है चीज़ें लागू होती हैं। तो हम सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति बहनों जैसे जंगली पक्षी के घोंसले या अंडों को परेशान नहीं करना चाहिए। और बहनों, एक चीज़ और है कि जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है तो उसके जो पंख है या उसकी जो भी चीज़ें हैं उसको हम बेच नहीं सकते हैं और ना ही हम उसके साथ कोई गलत व्यवहार करें, क्योंकि इसके लिए जो है वो कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जानवरों को अनावश्यक कष्ट देना अपराध है और इसके तहत सजा का भी प्रावधान है। पेटा इंडिया जैसे कई संस्थाएं इन कानूनों को लागू करवाने और बेजुबानों की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। तो बहनों, इस अधिनियम को तो हमें जानना ही चाहिए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हम सभी को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, कोई कॉलर हमसे जुड़ गई हैं। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो
2: हेलो
1: जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी बताएं।
2: हेलो
1: जी, बताइए कहाँ। देखिए, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है बहनों। अभी हम

0: संहिता की बात कर रहे थे कि पशुओं पक्षियों को प्रताड़ित करने या उनके खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान है, तो इन सब का ज्ञान तो हमें होना चाहिए बहनों, लेकिन उनके साथ क्रूरता नहीं बरतनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 में यदि कोई व्यक्ति किसी पालतू या जंगली जानवर को भी मारता है या जहर देता है या अपंग करता है तो उसे 5 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो बहनों, किसी भी गलत कार्य के लिए नियम कानून तो बने हुए हैं, लेकिन हम एक मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम पशु पक्षियों को जो है संवेदनशील रहे और जो हर संभव मदद हो उसे हम करें। और बहनों देखिए, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपसे बात करने का तो हमें बहुत मन है, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने के लिए। तो अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुषमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।

0: और ये चिट्ठियाँ आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया। इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।
1: मेरे दिल में आज

हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। मन चाहे गीत।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पीएस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए

0: तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
0: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मर्यादा लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: नित्यानंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारे के सारे डाक गांव में बढ़ जाने चाहिए थे।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई। यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वो छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब।

0: अब ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: अब मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई शिंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गाँव के नाले को भी नहीं लांग सकते, है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई शिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कहां रहे? अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: शिंगारम, हाँ? शिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम शिंगारम को नहीं जानते, जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
0: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
3: शिंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
0: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता।

0: कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
1: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
0: अच्छा,
1: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
0: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
1: हाँ, लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
0: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
1: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
0: बेचारा फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
1: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
0: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
1: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
0: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
1: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
0: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
1: हैं। माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
0: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: है, जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। आप क्या करो, सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत

0: बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
1: और कोई क्या करेगा।
0: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
1: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
0: अच्छा?
1: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
0: अच्छा, ये बात है।
1: छोड़
0: मुझे,
1: छोड़
2: मुझे। चेहरा बन गया, तुझे मैं छोड़ समा डालूंगा।
0: अरे मार डाला रे, दागिये ने मार डाला। अरे बचाओ,
2: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर पड़े एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
0: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा, देख लूंगा तुझे।
2: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से। अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाथ उधर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
0: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
1: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
1: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
1: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा धम का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
1: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा।

0: होता है। मैं तो शिव कामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: है ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हाँ, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
1: जी,
2: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो

0: आके बोलते हैं आपका शो देखा, अमुक इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक तो मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
0: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
0: जी,
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
0: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
0: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
0: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था, वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
0: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
0: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
0: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी?
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
0: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ,
0: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
0: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
0: मुहूर्त माना
1: तो क्या बात,
0: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
0: जी।
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
0: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ, हाँ,
0: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी,
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई। अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तू मेरे लिए गाओगी? तो बोला हाँ जरूर गाओगी।
1: क्या बात,
0: बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
0: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये।
1: हाँ,
0: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी।
0: हाँ जी।
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
0: राइट?
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे। हाँ। वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात,
0: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं है। मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग, अलग गायिकाओं के गाने हुए
1: जी,
0: उसकी
1: जी।
0: झलक।
1: हाँ।
0: उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी,
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
1: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: शीला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: मुंबई।
0: मुंबई, मुंबई में,
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे, सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो, जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी,
1: और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके, अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था। हाँ, दिल्ली में। हाँ। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके,
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा।
0: जी जी।
1: तो स्कूल के

0: दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी। अच्छा। मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी। अच्छा। और हाइट भी अच्छी थी जी, तो जी। मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी, जी।
0: नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
1: ये महिला विश्वविद्यालय,
0: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
1: अच्छा।
0: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के। अच्छा, बाकी अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था।
1: क्या बात है,
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना सके?
0: जरूर जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती, पुरुष लोग
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं। और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी।
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कभी पता नहीं शुरू है। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: वो
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है।
0: हाँ।
1: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
0: वाह।
1: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी कि हमने चलेगी
0: दौड़ेगी
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा।
0: क्या बात।
1: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास

0: चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तरस साहब से. और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलस साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे. बहुत मजा आया टूर में, उनसे बहुत सीखने को मिला.
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को. तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं.
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी.

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ, हाँ।

0: ये तो क्या है कि किस्से में सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा। मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी। तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी।
1: अच्छा।
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
1: अच्छा।
0: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी जी।
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
1: अच्छा।
0: तो वो कहा मैं कहा फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको जो मैंने नोटिस किया उनको
1: जी।
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे। और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों को सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे। रफी साहब को
1: किशोर दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
0: ड्यूएट नहीं गाया,
1: नहीं गाया। अगर किशोर दा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे क्योंकि ये क्या है,
0: मतलब टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी,
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई। उसकी वजह यह है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी,
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी, जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है,
0: अच्छा,
1: हाँ मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छा। कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए, तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे, तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में, मेरी सब सहेलियां मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ, रोज सुबह मेरा ये काम होता है।
0: क्या बात है,
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया पे।
1: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती हूँ।
0: क्या बात
1: है, हाँ। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो तुम्हारा करके गाती हो, वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता भाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा भाई जो रेंज में मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले गाने, अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती, तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
0: क्या बात है
1: भेजे। अच्छा। कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके जी, साथ गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का।
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोह मोह के धागे दम लगा कर हैशा, इस फिल्म
1: दम लगा के हैशा उसका
0: ये, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हारमोनियम पे,
1: मोह मोह के है
0: तो, और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत जी, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं, किसी
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप,
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज
1: में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा असली नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौबड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना, कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ।
1: हाँ। नकल नहीं आती उसमें
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती
0: हाँ।
1: है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ो बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्नदा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी

0: है
1: जी, जी.
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है.
1: हाँ.
0: तो फ्लैट लगेगा और
1: जी,
0: भाव
1: जी.
0: नहीं आएंगे उसमें. हाँ. तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है, किसी के आवाज में. तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज में.
1: हाँ.
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ.
1: अच्छा.
0: और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके.
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा. फिर भी उन्होंने ये भी बोला.
1: हाँ.
0: कि ज्यादा नहीं करना.
1: हाँ, हाँ.
0: लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में. बहुत ही
1: अच्छा.
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू.
1: जी जी.
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
1: हाँ.
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में.
1: जी जी.
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी.
1: बिल्कुल. ये लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत. तीन बार हुआ, चार बार हुआ. इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा. अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ. तो उन्होंने वो नीचे डॉट वगैरह देते हैं उनको बराबर करके लाइन में.
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें.
0: हाउस ऑफ बैम्बू.
1: जी जी.
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर. Number 54 the this is modulation.
1: हाँ, हाँ.
0: For the, कि उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना, वो भी डिपेंड करता है.
1: जी जी जी.
0: Number 54 the house of the bamboo door. Oh, बांबू चे घर, बांबू चे दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार. बांबू चे घर, बांबू चे दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार. बांबू चा घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला. झुलवित राहील पापा पापा तुला नी मला. नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बांबू डोर. Number 54, the house of the bamboo door.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या.
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत सी.
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छा. थोड़ा सुना था.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बनके कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी लिखावटी
0: गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रेमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसी का किसमें हाथ क्यों डालूं?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ।
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म,
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
0: क्या बात,
1: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि यह सब अचानक आया, प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
0: अच्छा।
1: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा।
1: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
0: अच्छा।
1: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
0: ओ,
1: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था। तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है, वो मेरे लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
1: बहुत बहुत, मैं तो बोलू आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
0: जी जी,
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कॉम्पिटिशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
0: जी।
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
0: जी।
1: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
0: वाह वाह,
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
0: क्या बात, परिवार की बात चली है
1: जी।
0: तो आपकी अगली पीढ़ी में
1: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
0: अच्छा।
1: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों।
0: हाँ।
1: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
0: बचपन से ही उन्होंने आपको
1: उन्होंने गाते देखा, तो उन्होंने
0: तो वो भी गाती
1: थी और लोग पसंद भी करते थे। ऐसे नहीं कि कशा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने

0: हम बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
0: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए, तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा।
0: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने। तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, पंख होती तो, वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद
1: आया। यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं।
0: अरे बापरे।
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो

0: चेक करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
3: आज के फनकार
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
3: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
4: सुनिए,
3: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह के साथ। साथियों, आज है शनिवार और आज के दिन हम आपके लिए लाते हैं बहुत कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, आज चर्चा के विषय होंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और महाराणा प्रताप जयंती। हमारी धरोहर में जानेंगे शांति निकेतन के बारे में। आर्थिक जगत में बात होगी डेफ अकाउंट की और साथ ही होंगे मधुर गीत भी। तो फिर साथियों, आइए शुरू करते हैं चर्चा। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम उन मेहमानों की बात कर रहे हैं जो बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के हजारों कोस दूर से उड़कर हमारे देश आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। साथियों, ये दिन हम साल में दो बार मनाते हैं, मई अक्टूबर के महीने में, ताकि हम इन परिंदों की हिफाजत के लिए जागरूक हो सकें। ये नन्ही पक्षी सिर्फ मौसम बदलने पर ही नहीं आते, बल्कि ये हमारे पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सोचिए, एक छोटी सी चिड़िया बर्फ से भरे पहाड़ों और बड़े समुद्रों को पार करके सिर्फ इसलिए आती है ताकि उसे सही खाना और माहौल मिल सके। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज बदलते मौसम, बढ़ते प्रदूषण और बिजली के तारों की वजह से इनका रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। हमें जरूरत है कि हम अपने आसपास के तालाबों, पेड़ों और प्रकृति का ध्यान रखें ताकि ये मेहमान हर साल यूं ही हमारे बीच आते रहें और हमारी धरती की रौनक बढ़ाते रहें।

इस दिन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हर साल इस दिन की एक अलग थीम रखी जाती है जो पक्षियों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान खींचती है। 2026 की थीम है साथियों, एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशंस मैटर। हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। ये थीम इस पर प्रकाश डालती है कि नागरिक कैसे पक्षियों के डेटा जैसे संख्या, प्रवास मार्ग को रिकॉर्ड करके उनके संरक्षण में मदद कर सकते हैं। और ये वैश्विक अभियान CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और NEWA अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट जैसे संगठनों द्वारा समन्वित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो एक बार में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी बिना रुके तय करते हैं। इन्हें रास्ता दिखाने में धरती का मैग्नेटिक फील्ड और सितारे मदद करते हैं। भारत में भी आर्कटिक टर्न और अमूर फाल्कन जैसी कई पक्षी आते हैं। इनका आना इस बात का सबूत है कि हमारा इकोसिस्टम सही काम कर रहा है। मगर ये पक्षी आना कम हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारी कुदरत खतरे में है। इसलिए इनकी सुरक्षा सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों चर्चा में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का दिन उस वीर योद्धा को याद करने का है जिनका नाम सुनते ही रगों में जोश दौड़ जाता है। जी हाँ, आज है महाराणा प्रताप जयंती। दोस्तों मेवाड़ की माटी के इस लाल ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप का जीवन हम सबके लिए स्वाभिमान और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए जंगलों में रहना और घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का सौदा कभी नहीं किया। आज के दिन हम उन्हीं के त्याग और बलिदान को नमन करते हैं। साथियों प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। बचपन में उन्हें प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता था। उनका बचपन मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों के बीच बीता जहां उन्होंने भील आदिवासियों के साथ युद्ध कला सीखी। बचपन से ही वे बहुत निडर और फुर्तीले थे। उनकी माँ जयवंता बाई ने उन्हें बचपन से ही धर्म और देश की रक्षा की प्रेरणा दी जिसने उन्हें आगे चलकर एक ऐसा योद्धा बनाया जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। साथ ही महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका अदम्य साहस और हल्दी घाटी का युद्ध है। उस दौर की सबसे बड़ी शक्ति से टकराना कोई मामूली बात नहीं थी। उनके पास भले ही सेना कम थी लेकिन हौसला पहाड़ जैसा था। उन्होंने छापा मार युद्ध की तकनीक अपनाई और दुश्मनों की नाक में दम कर दिखाया। उनके प्रिय घोड़े चेतक की वफादारी को कौन भूल सकता है जिसने अपनी जान देकर प्रताप जी को सुरक्षित बचाया। दोस्तों प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को फिर से जीत लिया था और ये साबित किया कि संख्या बल से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से युद्ध जीते जाते हैं। साथियों महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया लेकिन मेवाड़ को आजाद रखने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और वहां कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। साथ ही 1597 में एक शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से इस महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांसें ली। कहते हैं कि उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके सबसे बड़े दुश्मन की आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि दुनिया ने एक सच्चा और ईमानदार योद्धा खो दिया था। महाराणा प्रताप आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी वीरता की कहानियां हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देती रहेंगी। साथियों अगर हम महाराणा प्रताप को याद करें और उनके प्रिय घोड़े की बात ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। दोस्तों चेतक हमारा महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा था। इतिहास में चेतक का नाम उसकी वीरता, तेज रफ्तार और स्वामी भक्ति के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप संकट में थे तब चेतक ने अपने घायल पैर के बावजूद 22 से 25 फीट चौड़े नाले को एक छलांग में पार कर दिया था ताकि प्रताप जी की जान बचाई जा सके। उस नाले को पार करने के बाद ही चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है जहां लोग उसे सम्मान देने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एक जोश भरा गीत जो है फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से। गाया है रूमी, विवेक हरिहरन, शाश्वत सचदेव ने लिखा है, कुमार ने संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

साथियों, वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम जानेंगे शांति निकेतन के बारे में। आज हम आपको एक ऐसी जगह के सफर पे ले जा रहे हैं जहाँ की हवाओं में कविता है, जहाँ की मिट्टी में कला है और जहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शांति निकेतन की। दोस्तों, शांति निकेतन का मतलब ही है शांति का घर। पश्चिम बंगाल के भीरभूम जिले में बसा ये छोटा सा शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। इसकी नींव रखी थी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन इसे दुनिया के नक्शे पर एक पहचान दी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। साथियों, बंगाली कैलेंडर के अनुसार आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती आमतौर पर बंगाल महीने वैशाख के 25वें दिन, यानी जिसे आमतौर पर 8 या 9 मई माना जाता है, जो कि आज है, उसी दिन जयंती मनाई जाती है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनकी जन्मतिथि 7 मई है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा स्कूल जहां कोई चार दीवारी ना हो, जहां बच्चे कमरों में बंद होकर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे आम के पेड़ों की छांव में बैठकर पढ़ाई करते हों। गुरुदेव का मानना था कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो हमें प्रकृति के करीब लाए, ना कि उससे दूर करे, और इसी सोच से जन्म हुआ विश्व भारती विश्वविद्यालय का। दोस्तों, अगर आप कभी शांति निकेतन जाएं तो वहां की कुछ चीजें आपका दिल जीत लेंगी, जैसे उत्तरायण परिसर। यहाँ गुरुदेव के 5 घर हैं, हर घर की अपनी एक कहानी है। यहाँ घूमते हुए एक ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी आज भी यहीं कहीं अपनी कविताएं लिख रहे हों। कला भवन की बात करें तो दोस्तों

0: यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और मूर्तियां आपको हैरान कर देंगी। नंदलाल बोस और रामकिंकर बैज से महान कलाकारों की विरासत आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं है, यहाँ लाल मिट्टी है, पलाश के फूल हैं और कोयल की कूक है। ताजी हवा और खामोशी से भरा सुकून आपको अंदर से डिटॉक्स कर देगा। दोस्तों, चलिए थोड़ा वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं इस जगह के इतिहास को। बात साल 1863 की है, जब महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस वीरान और बंजर जमीन को अपनी साधना के लिए चुना था। उन्होंने यहाँ 7 छतों वाला एक मकान बनाया और इसे शांति निकेतन का नाम दिया। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ सिर्फ 5 बच्चों के साथ एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और शिक्षा का मतलब सिर्फ क्लर्क बनना रह गया था। तब टैगोर ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी विज्ञान का मेल कैसा हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से ये जगह आजादी के आंदोलनों और बौद्धिक चर्चाओं का केंद्र रही। साल 1921 में जब विश्व भारती को एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, तब महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ खिंची चली आईं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि यहाँ की लाल मिट्टी ने सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि नोबेल विजेता और महान विचारक भी पैदा किए हैं, जैसे आमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री नोबेल विजेता थे, सत्यजीत रे जो विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं, नंदलाल बोस जो महान चित्रकार हुए जो संविधान के चित्रकार भी थे, रामकिंकर बैज आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक थे, महाश्वेता देवी जो प्रसिद्ध लेखिका और सक्रियतावादी थी। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये वो विचारक और कलाकार हैं जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया को बदला है। शांति निकेतन वाकई एक ऐसी नर्सरी रही है जहां प्रतिभा को पंख मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
2: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
2: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
3: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
2: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंके, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
3: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
2: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
0: दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद आइए सुनते हैं एक धमाकेदार गीत जो है फिल्म फाइटर से, गाया है बी प्राक शिल्पा राव और विशाल ददलानी शेखर ने, लिखा है कुमार ने, संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे अगले और आखिरी सेगमेंट आर्थिक जगत का, जिसमें आज बात करेंगे डेफ अकाउंट के, यानी DEAF। जानिए आगे क्या है ये। दोस्तों डेफ अकाउंट का मतलब होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये बैंकिंग जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में आम जनता को कम जानकारी होती है। यहाँ इसके बारे में आसान भाषा में विस्तार से जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डेफ अकाउंट क्या है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित रहें, लेकिन कई बार लोग बैंक में खाता खोलकर उसे भूल जाते हैं या खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसके वारिसों को खाते की जानकारी नहीं होती। अगर किसी बैंक खाते यानी बचत खाता या चालू खाता में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता तो उसे उस खाते के पैसे को अनक्लेम डिपॉजिट मान लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 2014 में एक नियम बनाया कि ऐसे लावारिस पैसों को बैंक अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें एक खास फंड में डाल देंगे। इसी फंड को डेफ यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता का पैसा बेकार ना पड़ा रहे और उसका उपयोग बैंकिंग जागरूकता बढ़ाने में किया जाए। बात करें दोस्तों काम कैसे करता है ये, तो 10 साल की सीमा होती है इसकी। साथियों अगर आपके खाते में 10 साल तक ना तो कोई पैसा जमा हुआ हो और ना ही निकाला गया हो तो बैंक उस राशि को ब्याज सहित डेफ फंड में ट्रांसफर कर देता है। ये नियम FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी लागू होता है। अगर मैच्योरिटी के 10 साल बाद तक उसे क्लेम ना किया जाए, साथ ही पैसा सुरक्षित रहता है। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि हमारा पैसा इधर से उधर किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफ में पैसा जाने का मतलब है कि सरकार ने पैसा जब्त नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आप इसे कभी भी वापस मांग सकते हैं। साथ ही ब्याज की सुविधा, जब पैसा डेफ फंड में होता है तब भी उस पर ब्याज मिलता है। RBI समय समय पर इसकी ब्याज की दर को तय करता है। इसका मतलब है कि जब आप अपना पैसा वापस क्लेम करेंगे तो उसको बढ़कर ही मिलेगा आपको। साथ ही फंड का उपयोग, RBI इस पैसे का इस्तेमाल ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाने,

डिजिटल ट्रांजैक्शन सिखाने और बैंकिंग अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए करता है। साथियों, अगर आपको पता चलता है कि आपका ये आपके किसी रिश्तेदार का पुराना पैसा डेफ फंड में चला गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे वापस पाने की तारीख बहुत सरल है। सबसे पहले बैंक वेबसाइट चेक करें। हर बैंक को अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट डालनी होती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिनका पैसा अनक्लेम्ड है। आप अपना नाम या पैन कार्ड डालकर वहां सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, आरबीआई ने एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया है जिसका नाम है उद्गम। यहां आप एक जगह पर कई बैंकों में पड़े अपने लावारिस पैसों की जानकारी ले सकते हैं। बैंक शाखा भी जा सकते हैं। अगर आपको अपना नाम लिस्ट में मिल जाता है तो अपनी बैंक ब्रांच में जाकर एक क्लेम फॉर्म भरें। इसके साथ आपको केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार पैन फोटो देने होंगे और वेरिफिकेशन के लिए बैंक आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और वेरिफिकेशन सफल होने के बाद डेफ फंड में पैसा मंगवाकर आपके सक्रिय खाते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आर्थिक जगत में डेफ अकाउंट एक सुरक्षा कवच की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि जनता का लावारिस पैसा बैंकों के मुनाफे में ना जुड़कर वापस जनता की भलाई और शिक्षा में खर्च हो। अपने बैंक खातों को इनएक्टिव होने से बचाने के लिए साल में कम एक बार छोटा मोटा लेन देन जरूर करते रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, ये सेगमेंट अब यहीं पर समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एक धमाकेदार गीत जो है फिल्म रेस 3 से। गाया है दीप मनी, नेहा भसीन ने लिखा है कुमार ने, संगीत दिया है मीट ब्रदर्स ने।

0: साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अगले दिन के कार्यक्रम की। कल चर्चा का विषय होगा योग और तनाव प्रबंधन। ज्ञान विज्ञान में आप जानेंगे क्रायोस्फेरिक विज्ञान संस्था में बात होगी केंद्रीय सूचना आयोग की। उसके बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर रेडियो श्रोताओं से मंजिले सिंह की बातचीत और साथ ही होंगे मनोरंजक गीत भी। इसी के साथ दोस्तों, आशा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त आकांक्षा सिंह को दे इजाजत, नमस्कार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: हमारे युवा दोस्त सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: निखार इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बिरहा श्याम यादव और साथियों की आवाज में, और अब आपको सुना रहे हैं एक श्रम गीत सहगान के रूप में। क्षमा कीजिएगा, प्रतिमा यादव और सखियों की आवाज में।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: श्रोताओं, एक सूचना। 11 मई 2026 दिन सोमवार को सायं 5:30 से 6 बजे के मध्य हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय होगा ऑस्टियोपोरोसिस कारण और उपचार। इस विषय पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उस समय स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SM द्विवेदी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का नंबर 7376-8040-90 दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार को सायं 5:30 से 6 बजे की मध्य। सूचना समाप्त हुई और अब अगला गीत पहुंच चुका है आप तक, एक पूर्वी गीत शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों की आवाज में।

0: सुनथ्यू सखी सुनथ्यू कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनथे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

पदपन घटवा पे सखिया सहेलरी, अरे रसरिया बाट छोट भरब कैसे।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161 867 3

0: है निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल R.N. रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव M.A. Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का

प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। ठहरो जरा, ये पल यूं ही गुजरने न दो, थोड़ी सी बातें हैं इन्हें बिखरने न दो। पास हो तुम तो ये वक्त भी खूबसूरत लगे, थोड़ी देर और सही, खुद को ठहरने तो दो।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आज आपके साथ है आपका दोस्त गिरिजेश निषाद। माना कि दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, माना कि दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, लेकिन तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हाई गुजरता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्वयंवर का ये गाना, जिसे आवाज दी थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। और उसके पहले आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म असीना मान जाएगी का गाना। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र, सुनते हैं संस्कृत में समाचारों का बुलेटिन।
3: संस्कृत में समाचार। इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+% विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे ही देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मंत्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
3: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+% विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+100 भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

0: न्यायाधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् द्वादश राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबेगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबेगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉ. जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबेगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहार व्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉ. जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमलाप्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रीय राजमार्गस्य चतुःभागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65वीं जयन्ती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां उल्लंघनम् उद्दिश्य हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.30

0: लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी पंच दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य नव जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् सप्त जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटक तटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं सार्धसप्तवादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: समाचारों का बुलेटिन संस्कृत में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम की 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अगला गीत एक किसानी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हरी प्रसाद यादव और साथियों की आवाज।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजी स्वर गांव के। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:45 हो चुके हैं। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: पंचो जय हिंद। मीना,
7: हाँ भैया।
6: देखा आज जोन किसान बाड़ी में लेके आवा है ना, चर्चा है ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सामयिक कार्य और भेंटवार्ता रहे गर्मी की जुताई के लाभ, एक जानकारी दी है डॉक्टर आनंद सिंह जोन के सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रही है। फोन नंबर में बताई है इनसे।
7: हाँ भैया, और एक साथे साथे देखा लोकगीत एक विवाह गीत है ना, अंजु मिश्रा और इनके सखी के स्वर में रहे, और साथे साथे देखा मौसम के जानकारी और कल के कार्यक्रम, तो अपने कार्यक्रम में रहे करे।
6: हाँ बहने ही कुल रहे, लेकिन जहाँ तक बात है ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सामयिक कार्य विषय पर, यह हाँ। समय कौन चीज का जरूरत है, इस सब पर जानक जरूरी है।
7: बिल्कुल भैया, देखा यह सहती अपने खेते माँ जो ग्रीष्मकालीन सब्जियां है ना, जैसे करेला हो गए, लौकी है, तरोई है, कद्दू है, भिंडी, लोबिया, ये सब भैया है, तो यह के लिए इनके देखभाल के काम तो अपने सबके है ही है, लेकिन ये गर्मी के मौसम
6: हाँ, है भैया, खास करके ज्यादा हाँ, ध्यान दे,
7: ज्यादा ध्यान दे।
6: लेकिन मीना, हमें एक चीज खास भाई के बात ये है
7: हाँ,
6: कुछ लता वाली है, फैले वाली है
7: हाँ, हाँ,
6: कुछ सीधा रहत है, काहे मतलब अलग अलग तरीका है,
7: तो हाँ,
6: जौन से जौन रहा है वही हिसाब से पंचभयन का देखभाल करे की जरूरत है। अब जैसे करेला का देख ला, करेला है की फैले वाला पौधा है, कबो कबो पंचभैया इतना सींच देते ना ऊपर तक पानी चढ़ जाते है, तो जो फल रहा था वह ऊपर सड़क डर रहा था
7: के। भैया तो हाँ वही बात
6: है, हल्की सिंचाई,
7: हल्की सिंचाई, लेकिन भैया जो ये जैसे बहुत जब गर्मी लागत है ना तो वाष्पीकरण ज्यादा होते है
6: हाँ।
7: तो यह लिए माटी में अपने सबका नमी बनावे रखे का है, और भाई नमी बनी रहे तो अच्छी पैदावार हो, तो ये ध्यान देखा है कि जोन अपने सब सिंचाई करी था, बहुत गर्मी है
6: हाँ।
7: तो भाई दूसरे तीसरे दिन सिंचाई कर ले अपन
6: हाँ, दूसरे तीसरे दिन सिंचाई कर ले, लेकिन खास करके यह ध्यान देखा है सिंचाइया जब करे लागे, गर्मी बहुत तेज है, धूप हुआ था के, तो शाम के समय करें तो ज्यादा बेहतर रहे
7: हाँ।
6: ना पनिया उबाल खा थे पौधा का नुकसान करा था।
7: बिल्कुल, संझा के सिंचाई तो भैया वैसे बढ़िया रहा था, और अगर भाई नहीं संभव

0: सवेरे संध्या करे
1: तो बहुत सुबेरे कहले बहुत है सुबेरे कहले तो उसे ही होए कि जो है पौधन का अपन अपने सभी लू से बचाए सकित है।
0: देखा जहाँ तक की बात है जैसे कोहरा लौकी नेनुआ तरवई यानी कि तमाम मेर मेर के पंचवाई खेती के है लेकिन वह खास करके यह समय कौन चीज ज्यादा ध्यान दे का है काहे से कि लू चलता है गर्मी तेज है यह माँ हमार फसल का कौन नुकसान हो सकता है वही बिंदु पे ज्यादा ध्यान दे की जरूरत है। अगर किसान भैया खेत में जाइए अपने आप उनका जाहिर हो जाए कि ये चीज जरूरत है।
1: हाँ अब जैसे देखा फसल के अपने सब निगरानी तो करबे करी थे और कीट और बीमारी से अपने सबका समय से पता चल जाते है लेकिन एक चीज भैया ध्यान दे कि जो कीट और बीमारी है लागत है अपने पौधन में ना वो माँ जो है बहुत ज्यादा रासायनिक और कीटनाशक के प्रयोग ना करें है ना।
0: हाँ।
1: और ऐसे का होते जो अपन मित्र कीट है ना ओहू का नुकसान हो जाता है तो भाई अगर अपने सब रासायनिक कीट के प्रयोग करबे करी थे तो बहुत ओके संतुलित मात्रा में उपयोग करें।
0: देखा जहाँ तक हो सके धीरे धीरे एक जोन बा मिटावे का है रासायनिक खाद ना डाले कहे से कि एक बैग पंच भैया डाल के जोन बाटे ना कह सकते कि ना ज्यादा पैदावारी ना हो पाए फिर धीरे धीरे खत्म करे की जरूरत है तो खत्म कर दी है तो जोन अपने सबका नुकसान करता है ना ये सब नुकसान ना करे। और पंच भैया जोन बा नीम के देखा तेल है वो का स्प्रे कर सकते है सब्जियन में अगर पंच भैया सब्जी अगर अपना पैदा कर लेता है जहरीली चीज ना डालता है समझ ला की जिंदगी की आराम से बीते कोनो प्रकार के बीमारी अपने आप कम हुई है।
1: बिल्कुल भैया एक चीज अपने सबका और अपने ध्यान देखा सवे पंचन का कि खेते में अगर जिसे पानी रुके वाली समस्या है बरसाती पानी भाई अगर बरसावे लाग
0: और
1: पानी रुक जात है तो भैया जल निकासी के व्यवस्था अपने सभी का पहले से कर लेके
0: ए बहनी ज्यादा पानी हो गया ये हरी से जो ना खलार जहाँ रहे मजे कटाई दिए
1: हाँ।
0: तो पानी कम हो जाए तो पौधन में पानी लगबे नहीं करे और लेकिन एक चीज और मीना हम कहा पंच भैया से जैसे पंच भैया खूब निकी तरह से खेती कराता है हरा भरा बाकायदे दुरुस्त है और कीड़ा मकोड़ा से भी बचाए है बढ़िया देखता है संजा सुबेरे लेकिन दैया संजोग कमो कमो ऐसा आई जात है क्योंकि रतिया में चुपके से आए कि जोनबा सब खाए लिए थे
1: कीट तो वही
0: जंगली जानवर जो
1: ओके ताई तो भैया अपने सबका भाई पहले से सतर्क रहे हुए करी थे
0: हाँ।
1: तो जो नी नेट होता है ना जालीदार नेट होता है ओका लगाए सकत है तो उसे जो है ये फायदा रहे कि थोड़ा सा छाया भी मिल जाए और जो नी जानवर वाली बात की हो ना भैया उसे भी अपने पौधन का बचावा
0: अपन सुरक्षा अपने हाथे में है वही साथे साथे पंच भैया सब कुछ करे की जरूरत है।
1: हाँ और सब्जी जब तैयार हो जाए भैया तो समय से तोड़ ले और कोशिश ही करें कि जो उन लता वाले पौधे हैं ना ओका पानी से बचावे के ताई मचान
0: हाँ मचान पे थोड़ा ज्यादा ठीक रहे
1: हाँ।
0: देखा जैसे पानी अगर भर गया है नीचे नीचे जो झलासी कोनो कोनो चीज होता है के या बांस हाँ। दे दिए तो वही जब चढ़ा था ना बढ़िया फलदार हुआ था के जोन बा कोनो दिक्कत ना आवत है
1: निराई गुराई भाई अपन समय से करबे
0: अरे जैसे पंच भैया देखा टमटर वा ना जोन बरसरिया बांध बांध जोन बा बसवा गाड़ गाड़ कितना बढ़िया फराय लिए थे झुझुनी लाग रहा था के तो वही तरीके से पंच भैया बहुत कुछ कह सका थे।
1: हाँ लता वाली सब्जी अगर किनारे है ना तो भैया ओका चढ़ाए में आसानी भी रहा है ना तो और जो जाल वाल लाग जाते उसे जंगली जानवर से अपन पौधा बचबे करे और निराई गुड़ाई देखभाल कहे का मतलब है कि अगर समय से करत रहा तो ये सब्जी अपन एक मतलब आमदनी के अच्छा जरिया है
0: आमदनी
1: हाँ, करे
0: इसी जरूरी है लेकिन अक्सर देखा जाता है पंच भैया निराई गुड़ाई न कहे से ओकरी बात काव कही है जोन चीज जहरीली दवा है खरपतवार नाशक ओकर लायक डाल देते वैसे जहाँ तक हो सके जोन बार निराई गुड़ाई ज्यादा बेहतर रहे कहे हाँ। से कुछ ज्यादा अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल भैया कीटनाशक से तो भाई अपने सबका बचहीन का है रासायनिक खाद से बचे का लेकिन एक साथे साथे जोन गर्मी के मौसम है ना भैया वह माँ जोन अपन खाली खेत है ओका जुताई कह के अपन फसल के ताई पहले से तैयार कर लेकर
0: बहनी अगर गर्मी के जुताई पंच भैया कह दिए ना जवन जोता रहे और जवन न जोता रहे दोनों हाँ। मत तब अंतर होए हाँ। कि जब देखिए कहीं हाँ एका देखा जोताए रहे एका ना जोताए रहे तब उनका एहसास होए कि ना ही गर्मी की जोताई से ज्यादा लाभ है।
1: तो भैया देखा गर्मी की जोताई के लाभ के बात की हो ना तो एक बात कही लेके आए ना गर्मी की जोताई के लाभ एक विषय में बतावत है डॉक्टर आनंद सिंह और इनसे बतवान है पूनम वर्मा बहनी
0: चलो इन्हें सुना जाए
1: चलो
2: पंचो खेती पाती हमारे सबन के मुख्य व्यवसाय है और हम सभी के ये पूरी कोशिश रहते हैं कि अपने खेती किसानी से कौन इस जतन अपनाई जाए कौन इस तरीका अपनावा जाए कि हम सभी लागत कम लगाई लेकिन फायदा पुरहार मिला करें। तो देखें ये सब तो हम सभी अनुभवी किसान से मिली थे, उनसे अनुभव लेते हैं।

0: तमाम मेला प्रदर्शनी में जाए थे, वहां से नीच नीच जानकारी ली थे, लेकिन जानकारी दे के सिलसिला में अपन आकाशवाणी भी पीछे ना है। देखें ऐसे हर दिन अपने किसान पंचन के ताई बढ़िया बढ़िया जानकारी खेती पाती से संबंधित देवाई जाते। और यही क्रम में आज हम अपने बीच में अपने स्टूडियो में बुलाए बाटी डॉक्टर आनंद सिंह, जो उनकी सहायक प्राध्यापक है मृदा विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। तो डॉक्टर आनंद जी, सबसे पहले तो आपके स्वागत करिए अपने पंचायती में।
1: नमस्कार मैडम।
0: और जैसे कि आज के हमारे विषय है कि गर्मी की जुताई के लाभ, विषय पे बढ़िया बढ़िया जानकारी होते तो आज कहें ना गर्मी की जुताई के का का फायदे हैं
1: जी।
0: हम सबन के हम किसान पंचन के मिले तो उसके बारे में चर्चा हो जाए
1: जी। सबसे पहले किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि गर्मी की जुताई क्या है। अगर हम बात करें तो गर्मी की जुताई जो है गर्मी के समय में, ये अप्रैल से लेकर के जून तक के महीने में, जब तक की बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है उस समय तक, जब हम गर्मी की जुताई, गर्मी जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी को हम कई तरह के हमारे हल आते हैं, जैसे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आता है, चीसल प्लाऊ आता है, तो उससे जो उसकी ऊपरी सतह है उसको जब हम पलट करके नीचे कर देते हैं और हमारा जो गर्मी की जुताई जो है बेसिकली अप्रैल से लेकर के जून के महीने में हमारा होता है, क्योंकि इस समय हमारा जो खेत रहता है वो खाली रहता है।
0: तो ये मतलब खेत खाली बा, घाम बहुत तेज बा, तो हम जुताई के फायदा ले सकते
1: जी जी जी। इसके जो है बहुत सारे फायदे हैं, जैसे गर्मी की जुताई, क्योंकि
0: जैसे बतावा जाता है तमाम तरह के हल होते हैं जिससे हम जुताई कर सकते हैं। तो कितना इंच गहराई में हमें जुताई करे
1: ऐसा, जैसे एकरी खाती जो अलग अलग जो है फल हल आता है, जैसे हमारा मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आता है तो वो जो ऊपरी की परत अगर बहुत हार्ड है,
0: अच्छा,
1: बहुत कठोर हो गई तो उसको कर देता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन 0 से 15 या 15 से 30 सेंटीमीटर तक हमारा जो है जुताई होना चाहिए।
0: हाँ,
1: और अच्छा। एक खातिर जो है जैसे चीसल प्लाऊ आता है, उसके बाद हमारा कल्टीवेटर से भी आता है या मिट्टी पलटने वाला हल आता है, तो इस सब का उपयोग करके हम जो है अपनी मिट्टी में गहराई तक जुताई कर सकते हैं। और गहराई तक, जितनी गहराई तक जुताई होगी, हमारा जो मिट्टी की संरचना है, मिट्टी का जो गुण है, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता की बात करें, मिट्टी में पोषक तत्वों के संचयन की बात करें, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, उसमें जो है ये सुधार होता है।
0: अच्छा, जुताई करे से
1: जी।
0: अच्छा,
1: और इसमें अगर हम कुछ और सुधार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें इसे खरपतवार नष्ट हो जाता है, तो अगर गर्मी की जुताई में अगर हम करेंगे तो जो भी उसमें जो ऊपर अगर हमारे कुछ ऐसे खरपतवार हैं तो उनका जो है वो मिट्टी पूरा पलट देता है, जैसे चीसल प्लाऊ, एमबी प्लाऊ, तो वो जो है क्या होते हैं वो धीरे धीरे उसमें जो है वो सड़ जाते हैं,
0: मतलब जड़ जो है अंदर से निकल के
1: ऊपर आ जाते हैं।
0: गर्मी में
1: गर्मी बहुत ज्यादा रहती है जी, तो उसमें जो है उसका नष्ट हो जाता है। दूसरा हमारा लाभ है कि जैसे जो कीट होते हैं, तो कीट के जो अंडे वगैरह देते हैं वो अंडे जो है इसी जो क्रॉप रेसिड्यू, जो फसल अवशेष होते हैं, कभी कभी इन्हीं पे वो जो है अपना प्रजनन आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर हम इसको भी अगर हम जुताई करेंगे गर्मी की जुताई, तो हमारे जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा बात है कि जब गर्मी की जुताई हम करें तो उसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उसमें नमी की मात्रा जो है वो पर्याप्त हो, क्योंकि अगर बढ़िया नमी रहेगी तो हमारी मिट्टी जो है वो बढ़िया भुरभुरी हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: और हमारे जो फसल अवशेष रहेंगे वो जो है सड़ भी जाएंगे।
0: जैसे वहीं 2 दिन पहले जो बारिश भई है आजकल मौसम में
1: जी जी,
0: तो जहाँ नमी बा पर्याप्त, तो खेत खाली बा, वहाँ जुताई की
1: हाँ, वहाँ जुताई की जा सकती है। और वहाँ जुताई भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे गर्मी की जुताई करने से हमारा जो मिट्टी जो है, मिट्टी का संरचना बहुत अच्छा हो जाता है।
0: अच्छा, तो मिट्टी हमारा कैसे बढ़िया होते, कौन कौन तत्व कौन कौन गुण में आ जाते हैं
1: जी। जैसे मिट्टी अगर हम गर्मी जुताई करेंगे तो मिट्टी का संरचना अच्छा होगा, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: और जो हमारे फसल अवशेष रहेंगे, फसल अवशेष प्रबंधन भी गर्मी की जुताई में बड़ा एक महत्वपूर्ण है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि अगर हम गर्मी जुताई करते हैं उससे फसल अवशेष भी हमारा सड़ जाएगा, और फसल अवशेष सड़ने के बाद हमारी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा।
0: हाँ, मतलब माटी में पोषक तत्व
1: बढ़ेंगे जी जी,
0: फसल अवशेष से
1: जी।
0: बहुत किसान पंच जो है वो पलटते ना है, बल्कि वो जलावे लाए कोशिश कर रहे थे, तो काई ठीक है?
1: नहीं नहीं, उसको जलाना नहीं चाहिए। उसको जब हमारे पास है, हमारे पास खेत भी खाली है, कुछ हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे जो है लंबी अवधि तक हमारे खेत खाली रहती है।
0: अच्छा।
1: तो हम उसको आराम से जो है उसको नमी भी, अब बारिश भी इस समय सबसे अच्छी बात है कि बारिश भी हो गई है और खेत इस समय जुताई के लिए और सबसे बढ़िया समय हो गया है, कि जैसे ही नमी एकदम पर्याप्त जुताई के लिए होती है उसमें ट्रैक्टर चल पाए और अपना जो उसको जुताई करते हैं, फसल अवशेष आपका सड़ जाएगा
0: भाई, नमी पाएगा अपन माटी
1: जी।
0: और देखा जाए डॉक्टर साहब तो गर्मी की जुताई एक खेत का एक बार की जा सके थे कि और भी ज्यादा हम दो बार तीन बार करे से ज्यादा फायदा मिले।
1: जैसे गर्मी की जुताई अगर बहुत गहरी जो करते हैं दो साल में एक बार करें।
0: अच्छा।
1: लेकिन अगर हमें हमेशा गर्मी की जुताई एक जरूर करनी चाहिए, उससे क्या होता है कि जो हमारे कीट पतंगे हैं जो और खर पतवार हैं जो फसल में अगर हमारे आते हैं तो वो नहीं आते हैं।
0: अच्छा, रोगाणु भी जो हुई है वो खत्म होती है।
1: जी जी जी, बहुत रोग ऐसे भी होते हैं जो

0: रोग जनित होते हैं, रोग
1: हाँ,
0: जैसे जो पैदा करते हैं,
1: हाँ,
0: वो इसी समय उसी फसल अवशेष में रहते हैं, मट्टी में ही रहते हैं। जैसे रोग जनित हमें कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे अमीबा जनित रोग,
1: हाँ,
0: तो उनसे भी जब ये तापमान ज्यादा होता है, मिट्टी खुलती है, तो जो सूर्य की किरणें नीचे तक जाती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है।
1: अच्छा,
0: तो उससे जो है उनपे भी जो है बहुत रोकथाम में महत्वपूर्ण जो है उससे फायदा होता है।
1: मतलब कि गर्मी की जुताई करे से रोग होए के संभावना ना के बराबर,
0: ना के बराबर।
1: कीट किरोना जो बहुत साल से वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है,
0: बहुत रोकथाम
1: सब नष्ट हो रही है, और खर पतवार जो है उसके जड़ी वड़ी नीचे रह जाता है,
0: फसल अवशेष भी अच्छे से सड़ जाएगा,
1: सड़ जाएगा, और माटी भी उपजाऊ हो जाएगी,
0: मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी हमारी।
1: अच्छा
0: जी, जो गर्मी की जुताई है वो किसान को अभी कर देना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो आने वाली हमारी जो फसल है उसके लिए भी एक अच्छी मिट्टी निर्माण हो जाती है।
1: सही बात है, आने वाले समय में देखा जाए बेरन डाला जाए और धान की फसल के लिए हमें खेत का तैयार करेंगे तो अभी से हम,
0: हाँ, अगर अभी से कर देंगे तो अभी से करने से क्या होगा कि उस समय तक हमारी मिट्टी जो है वहाँ से खरपतवार नष्ट हो जाए,
1: नष्ट हो जाए,
0: तो हमें जो है क्योंकि धान आगे जो फसल हमें लेके धान फसल में उमन निराई बहुत करेक्ट पड़े,
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो फसल जो हमारे खरपतवार है वो गर्मी की जुताई से भी बहुत कम हो जाते हैं, 20-25% तक वो कम हो जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो उतना हमारा जो है लागत में हमारा बचत होगा।
1: हाँ हाँ, और बात सही है, देखें खरपतवार में निकाले में हमारा लागत जाता है, या फिर हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करे थे तो वह में हमारे पैसा खर्चा होते, कीट किरोना लग जाते हैं वो नुकसान ही करते हैं, और ओके रोकथाम में भी पैसा जाता है। तो ये तरह से अगर हम सब ये तरीका अपनाई जाए, गर्मी की जुताई कर ले जाए अपने खेतन के कम से कम एक बार,
0: जी कम से कम एक बार जरूर करें किसान भाई।
1: अच्छा।
0: उससे करने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब आजकल जो है रोटावेटर से जो है जुताई होने लगी है।
1: अच्छा।
0: तो वो रोटावेटर जो है खाली ऊपर ऊपर जुताई करता है, लेकिन ये गर्मी की जुताई कर देने से क्या होगा कि नीचे तक की भी मिट्टी जो होती है वो पूरा अच्छे से
1: 10 सेंटीमीटर नीचे,
0: हाँ 10-15 सेंटीमीटर तक जुताई वो करता है। और जो चिसल प्लाऊ है वो और गहरी जुताई के लिए आता है, अगर हमें और गहरी जुताई करनी है तो वो चिसल प्लाऊ, लेकिन वो चिसल प्लाऊ हमें 2-3 साल में एक बार करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गहरी जुताई।
1: तो जुताई के कितना दिन के लिए ऐसे छोड़ दे कि पाटा वाटा लगा दे?
0: ना ना, पाटा नहीं, बस ऐसे ही खोल देंगे, क्योंकि हाँ। जितना खुला रहेगा सूर्य की प्रकाश किरण जो है तापमान एकदम नीचे तक जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो नीचे के जो कीटाणु हैं कुछ खरपतवार हैं वो भी नष्ट होंगे, और दूसरा जल धारण करने की क्षमता भी नीचे तक बढ़ेगी, क्योंकि वही जो हमारी नमी है वो आगे चल करके लाभदायक।
1: बिल्कुल बात सही, बहुत बढ़िया, आप बताएं कि गर्मी की जुताई से क्या क्या फायदा है, किसान पंचन का आप अपनी ओर से क्या कहा चाहते हैं, क्या संदेश दे चाहते हैं?
0: किसान पंचों को हमारा यही संदेश है कि जो हमारा गर्मी की जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन, इन दोनों का बहुत ही आपस में एक अच्छा संबंध है। आपके फसल का प्रबंधन भी हो जाएगा अवशेष का, उसके जो अवशेष बचे हैं वो भी प्रबंधन हो जाएगा, आपको जलाना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप जुताई करेंगे तो आपकी गर्मी की जुताई से जो भी लाभ होने हैं, चाहे वो खरपतवार नष्ट होने हो, रोग आपके नष्ट हो, जो हानिकारक कीट है वो नष्ट होने हो, और उसके साथ साथ आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो बढ़नी है, उन सब चीजों में वो लाभदायक है। तो इससे आप जो है फसल अवशेष भी प्रबंधन कर सकते हैं और आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल हम सबन के लापरवाही वही ना सोचे कि चला ये साल ना है, पिछले साल करे है, ये साल का करे करी। अगर ये तरह से जैसे आप बताई ना अप्रैल के महीना से जब जेके खेत काली हो जून तक, और एक जुताई करें और एक पूरा फायदा उठावे, अपने माटी का स्वस्थ बनावे और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिले। तो डॉक्टर आनंद सिंह सहायक प्राध्यापक मृदा विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान पंचन का गर्मी के जुताई से का का फायदा मिले, कितने विस्तार से कितने अच्छे से हमारे किसान पंचन का बताएं। हम तो उम्मीद करे थे कि किसान पंच गर्मी की जुताई के जरूर लाभ उठेंगे, पंचन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मीना,
3: हाँ भैया,
2: अरे सुनत रहो,
3: बिल्कुल
2: देखा गर्मी की जुताई के लाभ
3: भी सुने,
2: हाँ देखा गर्मी की जुताई के लाभ है, एक जानकारी देते रहे डॉक्टर आनंद सिंह और पूनम वर्मा इनसे बतियात रहे।
3: हाँ भैया, और हम तो समझी थे कि जो उन पंचे रहे ना वह सुने हुई है एक बढ़िया से कि ये जो गर्मी है मतलब खाली खेत हो जाते हैं अप्रैल से लेके जून तक का, भाई जैसे जैसे अपने पंचन का समय मिले खेत अपन खाली हो जाए वैसे वैसे ओका जुताई कर ले और गहरी जुताई करे। हाँ,
2: गहरी करे। लेकिन एक चीज है, जैसे मनई सोहता था के जोन बा का सोहता की जरूरत हुआ थक जात है के, वही मेर से खेतों की जरूरत है सोहता के चाहिए। बीज के जोन एक फसल है हम कही तो ना लिया, गर्मी के जुताई कह दे और ओकरी बाद जोन बाटे वो ताकत आई जाए हम।
3: हाँ भैया देखो, कीट कड़ौना जोन रहा थे माटी में वो सब भाई वो मर जाते हैं और

0: सर बात जो है अपन गहरी जुताई से इजोनी खरपतवार वाले जो बताए ना डॉक्टर भैया वो सब सड़ जात है और जोन फसल अवशेष है भैया वो वही में सड़ जाये जलावत है जोन पंचे
1: नुकसान करत है ओका जलाव के ना चाहिए जोन लाभदायक कीट रहा थे सज्जे मर जाते थे वो जोन की फसल के लिए लाभप्रद होते हैं इनके
0: हाँ।
1: ऐसा में फसल अवशेष जोन हो सड़ावे के चाहिए
0: बिल्कुल ओका बिल्कुल ना जलावे और सब पंचे आशा है कि जोन गर्मी के जुताई के लाभ बताई सुनवावा गए ना
1: जरूर लाभ ले
0: लाभ ले है भैया
1: लेकिन एक चीज है हम तो जैसे मन ये काम करा था खूब मेहनत खेती किसानी में करत है लेकिन समय समय पर हर चीज आवत है कि ये चीज जरूरत पड़त है कि जैसे मान ला शादी ब्याह है चारों तरफ भाग दौड़ है कहो अपने घर में पड़ गए या नात बात हित व्यवहारिक में कहा मतलब कहो न कहो जाइन का है रोज ना
0: हाँ भैया तो देख जोन गौन बिया पड़त है ना तो वो में गीत गौने जोन होत रहा है नात रिश्तेदार जुटा रहा है ना हंसी ठिठोली भी होते है गाली भी होते है भाई ब्याह में तो उसे जान लो कि जो है अपने सबके जो है जीव एकदम
1: गदगद हो जाता है
0: और
1: हमारा कितना हुआ था ना जैसे भात खाए बैठी तो देखा वही समय के देखा मन गरियावत है हंसी खुशी से देखा टार दिया था कि जोन बाटे कितना बढ़िया हुआ था कि कितना बढ़िया दृश्य रहा था कि कितना बढ़िया रौनक रहा था समय पे विवाह गीत और जोन बा चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली नजर आवत है
0: बिल्कुल भैया तो देखा ये जो अंजू मिश्रा और सखिन के स्वर में गीत लेके आवा गया है ना
1: तो कहना चलो सुना जाए फिर
0: चलो

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मीना।
4: हाँ भैया।
3: देखा अपने सबके खेती किसानी जोन है, यानी कि मेहनत करे वाला ही है, मेहनत जे करे वही हिसाब से ओका लाभ मिला था।
4: हाँ भैया, देखा अपने सब खेती में मेहनत तो करवे करी थे, अच्छा आमदनी के ताई, बढ़िया पैदावार के ताई, मुला एक साथे साथे देखा जोन ये सहायक रोजगार है ना खेती।
3: हाँ,
4: से
3: खेती
4: बहू के प्रति अपने सबका सजग और सतर्क रहेगा है।
3: हाँ, जोन ही बात कहते हो, जैसे मछली पालन भय या मुर्गी पालन भय या सुकर पालन, मधुमक्खी पालन, यानी कि तमाम मेर मेर का है पंचो भैया, कौनो न कौनो अपनाई के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
4: हाँ भैया, और देखा ये हमारी नहीं कहे का है कि ये के ताई अलग से अपने सबका समय के जरूरत है, नहीं अपने सबका ये जो खेती बाड़ी वाला है काम ओके बाद भी समय मिला था, और वही खाली समय के उपयोग अपने सब इन सब व्यवसाय में कर सके।
3: हाँ, अब जैसे देख ला मछली पालन है, अब पंच भैया जोन बाटे तालाब पोखरा है, वही भैंस है या कौन जानवर है, नहातो धोतो है, और संध्या सवेरे टहरते है, और वही पे जोन बाटे टटरी बनाई के बत्तको पाल सका थे, आम के आम गुठली के दाम वाली बात रहा थे।
4: हाँ भाई, और एक ताई कहूँ थोड़ा सा, जैसे अलग से कुछ समय के जरूरत नहीं है, और जैसे मछली पालन के है तो भाई देखभाल तो अपने सबका करे इनका है, और इनके खान पान के ताई बहुत अलग से अपने सबका हाँ। व्यवस्था नहीं करे पड़त है।
3: नहीं नहीं, सब वही मिल जाता है, और कुल अलग से जैसे ताजा गोबर भय
4: हाँ।
3: या चुनी चोकर जौन कुछ है भूसी वगैरह पालिस सभी पंच भैये देवा करत है, एक साथे साथे जौन बाटे वह पंच भैयन का बहुत ध्यान दे पड़त है, ताकि लागी लगाई पूजी में दाग न लागे पावे।
4: हाँ देखो, देखभाल बिना तो भाई कोनो भी काम ठीक नहीं होते भैया, देखभाल के ताई तो अपने सबका बिल्कुल चौकन्ना रहेगा है।
3: तमाम हमा जोन बाटे रोहू नयन भाकुर ग्रासकार बिरगर चाइना सिल्वर तमाम पंच भैया जी आए, झमाझम जब कूदा थे ना संजय सवेरे जाइए टहरे, बड़ा आनंद आवत है।
4: देखाई में नीक लागत है भैया, बस वही है की जरूरत है अपने सबका की थोड़ा सा भाई देखभाल के प्रति सतर्क रहिए, तो ये सब व्यवसाय अपन घर बैठे खेती के साथे साथे होते है और बढ़िया आमदनी होता
3: है, ओकर लाभ लीन जाए सका
4: था। भैया
3: बस सोचे समझे जागरूक हो एक जरूरत है।
4: अब देखा जागरूक के बात क्यों ना, तो ये जोनी मौसम के जानकारी लेके आये हो ना,
3: बताओ चला भैया।
4: हाँ भैया, अधिकतम तापमान जोनी अपने सबका आज मिला है
3: हाँ।
4: अधिकतर तापमान 35.0 डिग्री है सेल्सियस है, जो उनकी -4.0 रहा, और न्यूनतम जो है वो है 23 डिग्री सेल्सियस, जो उनकी -0.5 रहा,
3: लेकिन आर्द्रता अधिकतम जो रही यानी कि 77%
4: 87%
3: हाँ, हाँ। और न्यूनतम जो रही 47%
4: हाँ।
3: देखा हवा की गति 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
4: हाँ।
3: और दिशा रहा दक्षिणी पूर्वी।
4: हाँ भैया, और देखा वर्षा जो है वो शून्य रहे, और पूर्वानुमान भी यही है ना कि जो ये उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक जो है बादल छावा रहे, और साथे साथे जो उन्हें वर्षा की कोनो संभावना नहीं है।
3: देखा ई रहा मौसम के हाल।
4: हाँ तो, लेकिन भैया मौसम ही जो उन करवट बदलत है ना
3: हाँ,
4: वो के ताई अपने तबका बिल्कुल सचेत
3: रहे के जरूरत है। जैसे मौसम के साथ साथ जे पंच भैया चला था ना, तो खेती हो या कोनो चीज हो उमन नुकसान ना होते, सतर्क रहा था के,
4: हाँ,
3: सतर्क रहे के

0: जरूर आता है
1: बिल्कुल, लेकिन अब लगे हाथ अपने पंचन का काल के कार्यक्रम भी बताया जाए कि कल कृषि जगत रहे।
0: हाँ, कृषि जगत रहे, जोने में चर्चा रहे, यानी कि शिक्षा है अनमोल रतन।
1: हाँ, और ये केला वा देखा बढ़िया बात बत कही, जानकारी तो रहबे करे,
0: देखा गीत गौनाई तो रहबे करे, जोन में नई नई जानकारी फिर कब सुनवाओ जाए, देखा घड़ी इशारा करता है न।
1: हाँ, कि अपने सब भाई पंचायती से विदा लीन जाए, तो यही वादा के साथ कि फिर कार्यक्रम में आवा जाए, तब तक के मीना
0: और हरी भैया का आज्ञा दे,
1: जय हिंद।
2: किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, आपको बता दें कि फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से आप सुनेंगे 8:15 से। गजलों का कार्यक्रम महफिल ए गजल हम सुनवाएंगे 9:15 से। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुनवाया जाएगा आज रात 9:30 से 10:30 तक। और अब कल के कार्यक्रम विवरण। कल प्रातः 7:15 से बताया जाएगा दिन भर का कार्यक्रम विवरण और भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश सुन सकेंगे प्रातः 7:30 से। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम सुनवाया जाएगा 8:15 से। दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में प्रातः 8:30 से सुना जा सकता है आज की बात। विषय होगा घरेलू गैस के विकल्प, साथ ही समाचार पत्रों से और फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी। व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत आपके संदेश आपके गीत आप सुनेंगे 9:00 और बातें आसपास की हम सुनाएंगे 9:30 से। विषय होगा जल बचाएं जीवन बचाएं। लोकरंग कार्यक्रम सुनवाया जाएगा 12:30 से। और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुन सकेंगे 1:00 से। फेसबुक आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कुछ तुमने कहा प्रसारित किया जाएगा 1:30 से। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 2:00 और बाल जगत कार्यक्रम में 2:30 से प्रसारित किया जाएगा चर्चा। विषय होगा लू से करें बचाव और खाली समय का करें सदुपयोग। समृद्धि सेठ की वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा मेरी वाली गर्मी की छुट्टी। साथ ही रोचक जानकारी में भारत में जनगणना, प्रेरक व्यक्तित्व में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और रविन्द्रनाथ टैगोर। कल शाम 5:00 युवाड़ी कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा चर्चा। विषय होगा योग और तनाव प्रबंधन, ज्ञान विज्ञान में क्रायोस्फेरिक विज्ञान और संस्था में केंद्रीय सूचना आयोग। लोक संगीत कल शाम 5:30 से और गूंजे स्वर गांव के 6:30 से सुनवाया जाएगा। शाम सुहाने सुन सकेंगे शाम 6:10 से। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:45 से सुना जा सकता है चर्चा। विषय होगा शिक्षा का है अनमोल रतन। सहायक विकास अधिकारी श्री रंजीत त्रिपाठी जी जानकारी देंगे मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं खरीफ फसलों की तैयारी के बारे में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शेर और गीत सुनवाया जाएगा कल रात 8:15 से। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुना जा सकता है कल रात 9:15 से। और हेलो अयोध्या कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 से 10:30 तक। तो श्रोताओं, ये थे कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और अब आपको लिए चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र, सुनते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता, संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
2: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी बानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
3: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय तीन दिन का कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंदों को यहाँ पर आमंत्रित किया और आज

0: सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना प्रवरणा कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए दो दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
3: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
4: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। आईटीएफ जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने आज

आईटीएफ जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं हमने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का शेष भाग।

फौजी भाइयों, उदास भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं और मेरे छोटे भाई हैं पंकज उदास। एक गाना उन्होंने गाया, ऐसा दिल से गाया कि आदमी जब सुनता है तो रो पड़ता है, और खास तौर से जब अपने देश से दूर, अपने गांव से, अपने वतन से दूर होता है, तब उसको लगता है कि मैं कब पहुंच जाऊं, कब अपने घर जाके अपने परिवार वालों से मिलूं। ये गाना सुनने के बाद हर इंसान सोचता है कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और अपने परिवार वालों से मिलूं। जब हम भी ये गाना सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। मुझे आशा है आपको ये गाना जरूर पसंद आएगा, अपने परिवार की याद दिलाएगा। मेरे छोटे भाई पंकज, जो मुझे जान से प्यारे हैं, उनका गाया हुआ ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत फिल्म नाम के लिए, जिसमें उन्होंने खुद फिल्म में एक्टिंग भी की थी। गीत है चिट्ठी आई है।

फौजी भाइयों को खुश करें क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हैं, मगर ये शायद दूर की बात है। इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको मजा आया हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मगर जाते जाते आपको फिर सलाम करता हूं और आपको ये फिर से कहता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं उसका हमें अंदाजा है, हम महसूस करते हैं जो काम आप कर रहे हैं, हम हमेशा आपके ऋणी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। मेरा ये गीत फिल्म कुर्बानी से आप सब पे कुर्बान है।

0: फौजी भाइयों, जाते जाते मनहर उदास का सलाम, सिर्फ सलाम नहीं, जय हिंद।
1: फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक मनहर उदास द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हसन जी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: आप हैं विविध भारती के संग।

जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान हूं। हर साल भारत में पैसेज माइग्रेंट्स यानी कि रास्ते में रुकने वाले प्रवासी पक्षी आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं। ये पक्षी ना तो गर्मियों में आते हैं और ना ही सर्दियों में, बल्कि मध्य और पूर्वी एशिया में अपने प्रजनन स्थलों से अफ्रीका में अपने शीतकालीन स्थलों की ओर प्रवास करते समय ये पतझड़ और वसंत के मौसम में भारत से होकर गुजरते हैं। गुजरात और राजस्थान पैसेज माइग्रेशन के बहुत बड़े केंद्र हैं। यहां अगस्त से अक्टूबर के बीच हजारों की तादाद में पक्षी गुजरते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बारिश के बाद हरे भरे और कीड़े मकोड़ों से भरे इस इलाके में उपलब्ध भोजन का लाभ उठा सकें। भारत में पैसेज माइग्रेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है गुजरात का कच्छ का इलाका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकी महाद्वीप के करीब है और यहाँ अलग अलग तरह के प्राकृतिक आवास मौजूद हैं। कच्छ से 8 से भी ज्यादा प्रजातियों के पैसेज माइग्रेंट्स गुजरते हैं, जिनमें यूरोपियन रोलर, रेड बैग्ड और रेड टेल्ड श्राइक, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, रूफ टेल्ड स्क्रब रॉबिन, ग्रेटर व्हाइट थ्रोन, कॉमन कुकू और ब्लू चीक्ड बी ईटर शामिल हैं। इनमें से रोलर कुकू और बी ईटर की कुछ आबादी भारत के भीतर ही प्रजनन भी करती है। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्र में बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही निकल पड़ते हैं। वहां से लंबी यात्रा करके ये बर्ड्स भारत आते हैं और कुछ महीनों तक यहाँ रहते हैं। गर्मी के मौसम के पहले ये यहाँ से वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लैमिंगो, रफ तिदार, गुलाबी पेलिकिन और गैडवाल प्रमुख हैं। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों के बीच मौसम और जलवायु में बहुत ही ज्यादा फर्क देखा जा सकता है, लेकिन इस फर्क की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आते ही सर्दी से बचने के लिए अपने इलाके छोड़ देते हैं और वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। यहाँ उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना पड़ता है, इसलिए जीवन आसान रहता है। भारत के मैदानी इलाकों में झीलों के आसपास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। वैसे आपको बताएं कि मुंबई जहां से हम बोल रहे हैं यहां पर भी फ्लेमिंगो आया करते हैं और बड़ी तादाद में आया करते हैं। मुंबई में शिवड़ी नाम का इलाका है जहां बड़ी तादाद में फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा कोंकण के समुद्र तटों पर भी बहुत सारे पक्षी आया करते हैं। भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं साइबेरियन क्रेन या सारस। सारस परिवार की एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जो साल का ज्यादातर समय वेस्टर्न साइबेरिया में गुजारती है। ये पक्षी सर्दी के मौसम में साइबेरिया की कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए 4000 मील यानी अगर इसमें 1.5 का आप गुणा कर दें तो आपको पता चलेगा के कितने किलोमीटर होते हैं, इतने किलोमीटर दूर आते हैं। और भारत में ये मुख्य रूप से भरतपुर नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी तादाद में झुंड के रूप में आते हैं। मुख्य रूप से ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में आते हैं जो इनका सबसे बड़ा प्रवास होता है। ये केवल अक्टूबर के महीने में आते हैं। रफ पक्षी आर्कटिक के टुंड्रा इलाके के पक्षी हैं। ये भी बर्फीली सर्दियों में भारत का रुख करते हैं जहां इस मौसम में इन्हें भरपूर खाना मिलता है, लेकिन गर्मियों में इनकी ब्रीडिंग का मौसम शुरू होने पर ये अपने इलाके में वापस लौट जाते हैं। तिदारी यानी उत्तरी शोवेलर को खोखार, गिराह या पुनन भी कहते हैं। ये सतही बतख है जो यूरोप और उत्तरी एशिया में रहती है, लेकिन सर्दियों में दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में ये चली आती है। और हैरत की बात यह है कि अपनी इस यात्रा में ये हिमालय पर भी थोड़े समय के लिए ठहरती है। पेलिकन अपनी विशाल चोंच के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इनमें गुलाबी पेलिकन या रोजी पेलिकन के पंखों का फैलाव लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तकरीबन 12 फुट का फैलाव होता है इनके पंखों का। ये उत्तर भारत में

ऐसे तालाबों और झीलों में आना पसंद करते हैं जहाँ मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। गैडवाल छोटे भूरे रंग की बतख होती है जो सर्दियों में भारत में बड़ी तादाद में आती है, यूरोप से आती है और साफ पानी वाले तालाबों और झीलों में रहना पसंद करती है। तो भाई हमने आपको बताया कि 9 मई को माइग्रेंट बर्ड्स डे मनाया जाएगा और भारत में कौन कौन से प्रवासी पक्षी किन इलाकों में किस मौसम में आते हैं, क्या कभी आपने इन पक्षियों को देखने की और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है।

10 मई का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया भर में माओं के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण को फोकस में रखने वाला ये दिन है मदर्स डे। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस बरस 10 मई को ये दिन मनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, 20वीं सदी की बात है। फिलाडेल्फिया में एना जार्विस रहती थी, जिन्होंने अपनी मां को याद किया और इस तरह से मदर्स डे की नींव पड़ी। एना जार्विस की मां सारी जिंदगी महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा के लिए कोशिशें करती रही थीं। 1905 में उनकी मौत हुई और बाद में एना ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। 12 मई 1907 को एना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्रेफ्टन में चर्च में अपनी मां की याद में एक सभा आयोजित की। 5 साल के भीतर अमेरिका के लगभग हर राज्य में ये दिन मनाया जाने लगा। फिर 1914 में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने इसे नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। इसके बाद ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और अब 10 मई को मदर्स डे है, यानी कल के दिन आपको अपनी मां को करना है सलाम, उनको कहना है थैंक यू और उन पर प्यार बरसाना है।

8 मई को पूरी दुनिया में रेड क्रॉस डे मनाया गया और आज हम आपको बता रहे हैं कि ये दिन कैसे शुरू हुआ। असल में ये आयोजन रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी के संस्थापक जीन हेनरी डोनेंट की जयंती के दिन मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के दिन। विश्व रेड क्रॉस डे मनाने का विचार सबसे पहले 1933 में टोक्यो जापान में आयोजित एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सम्मेलन में आया था और इसकी वजह यह थी कि हेनरी ड्यूनेंट की स्मृति को सलाम किया जाए और मानवता की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हेनरी ड्यूनेंट ने 1859 में सोलफेरेनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद की थी। ड्यूनेंट ने इस बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सोलफेरेनो और युद्ध के समय घायलों की सहायता के लिए उन्होंने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था। मानवता को जिंदा रखने के लिए उन्होंने लगातार कोशिशें की थी। इत्तेफाक की बात है कि 2026 की विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम भी यही रही, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। आप दिन में आजकल एक वाक्य बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। इस बरस सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने तो ये अनुमान भी दिया है कि मई के महीने में हीट वेव बहुत दिनों तक कायम रह सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2026 में सुपर एल नीनो डेवलप हो सकता है। ये मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसने 1877-78 में भयानक तबाही मचाई थी। अब जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन रही है, उसके हिसाब से दोबारा सुपर एल नीनो के आने का खतरा बढ़ गया है। वैसे एल नीनो के बारे में आपको बता दें कि यह जलवायु से जुड़ी एक घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल जाता है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है, मानसून कमजोर हो जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है जो एल नीनो के बनने का संकेत भी है और इस वजह से गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। गर्मी का मौसम आम लेकर

आता है आइसक्रीम और कुल्फी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, छतों पर सोना, इन तमाम खुशगवार चीजों के बीच आजकल जो चीज सभी को परेशान कर रही है वो है हीट वेव। हीट वेव के वजह से गर्मियों का जो मजा है वो एक तरह से खराब ही हो रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को खबरदार रहने के लिए चेतावनी भी जारी की है। वही जिज्ञासा कार्यक्रम में तो हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं ना। आप सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये हीट वेव आखिर है क्या। गर्मियों में गर्म हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लेकिन हीट वेव तब होती है जब किसी जगह का मैक्सिमम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब हीट वेव आपके लिए क्यों खतरनाक है ये हम आपको बता रहे हैं। हीट वेव या लू के चलते चक्कर आ सकता है, सिरदर्द और बेहोशी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इससे पानी की जोरदार कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर में बहुत भारी गिरावट भी आ सकती है। लंबे समय तक अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा रहे तो दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर और दिमाग जैसे अंगों पर भी खतरा बना रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा एबनॉर्मल गर्मी में निकलते हैं तो मस्तिष्क में सूजन भी आ सकती है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इसके लक्षण हम आपको बता दें, जब कोई व्यक्ति हीट वेव के संपर्क में आता है तो उसका इंटरनल सिस्टम ऊंचे तापमान के अनुकूल नहीं बन पाता। लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने के बाद सबसे पहले तो पसीना आने की जो काबिलियत है उस पर असर पड़ता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने की एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब किसी व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाता है तो उसे गर्मी से थकावट होने का खतरा ज्यादा होता है और हीट स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घर के अंदर रहने चाहिए, ठंडा लेकिन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लिक्विड लेना चाहिए। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि लू से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आमतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कड़ी दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी खूब पानी पीना है, बहुत सारे तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल करना है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, 30 मिनट का अलार्म सेट कीजिए। हर 30 मिनट में आपको थोड़ा ना थोड़ा पानी जरूरी तौर पर पीना है। कैफीन या अल्कोहल या चीनी वाले लिक्विड से बचें, बर्फीली चीजों से बचें क्योंकि ये पेट में ऐठन पैदा कर सकती हैं। जहां तक संभव हो घर के अंदर रहें, सुबह और शाम के वक्त ही आपको बाहर निकलना है। सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, छाता लेकर चल सकते हैं, साथ में पानी लेकर चल सकते हैं। हीट वेव से बचिए, गर्मी का सामना कीजिए। अब देखिए मौसम का जो असंतुलन है उसका जो असर है वो तो पूरी दुनिया में दिखाई दे ही रहा है। जिज्ञासा कार्यक्रम में अब हम तलत महमूद को नमन कर रहे हैं। मखमली आवाज के धनी जाने माने गायक तलत महमूद ने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाने का सफर शुरू किया था। 16 बरस की उम्र में उनका पहला गाना आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया और उनके रिकॉर्ड निकाले गए। फिर 1944 में तलत महमूद गायक और अभिनेता बनने की चाहत लिए कोलकाता चले गए। तपन कुमार के नाम से कई बंगाली और हिंदी गाने गाए और उसके बाद वो मुंबई आ गए और मुंबई में उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन वो एक बड़े पार्श्व गायक के रूप में बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। तलत महमूद के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 9 मई को उनकी याद का दिन होता है। हम उन्हें विनम्र नमन कर रहे हैं।

था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी, और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

पिछले हफ्ते आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपनी अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, स्त्री को दासी या फिर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं होता। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ गई। पूरी कहानी मृणाल की जबानी है, सुनिए आगे। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहां की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी, पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी

ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था, इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया, दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता, बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे, कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों, क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल।

हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी, इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्या

0: समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सभी सुनने वालों को गिरिजीश निषाद का नमस्कार। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम एक ही कलाकार से, जहां हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के उन सितारों को जिनकी आवाज आज भी दिलों को छू जाती है। दोस्तों, आज की इस खास महफिल में हम बात करेंगे उस रेशमी आवाज की जिनकी गायकी में दर्द भी था, नजाकत भी और मोहब्बत की एक गहरी छाया भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान गायक और अभिनेता तलत महमूद की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत तलत महमूद की गाए फिल्म संग दिल से।

24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद साहब ने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में कर दी थी। उनकी आवाज में जो मिठास और दर्द था वो सीधे दिल तक पहुंचता था। उन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि बंगाली और उर्दू गीतों में भी अपनी गायकी का जादू बिखेरा। और अब अगला गीत हम सुनवा रहे हैं तलत महमूद।

दोस्तों, तलत महमूद के पिता का नाम मंसूर महमूद था। पिता मंसूर महमूद की संतानों में तीन बहन और दो भाइयों के बाद तलत महमूद छठी संतान थे। घर में संगीत और कला का सुसंस्कृत परिवेश उन्हें मिला। इनकी बुआ को तलत की आवाज लर्जिस पसंद थी। भतीजे तलत महमूद बुआ से प्रोत्साहन पाकर गायन के प्रति आकर्षित होने लगे। इसी रुझान के चलते मोरिस संगीत विद्यालय, जो वर्तमान में भातखंडे संगीत विद्यालय में, उन्होंने दाखिला ले लिया और यहीं से शुरू हुआ तलत महमूद के गीत संगीत का सफर। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म बाबुल से, जिसे गाया है तलत महमूद ने। शमशाद बेगम।

जी हाँ दोस्तों, लखनऊ आकाशवाणी से शुरुआत हुई तलत महमूद की गायकी का सफर। जी हाँ, शुरुआत में तलत महमूद ने लखनऊ आकाशवाणी से गाना शुरू किया। 16 साल की उम्र में पहली बार आकाशवाणी के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था। गानों को खूब प्रसिद्धि मिली। इसी के बाद HMV की एक टीम ने लखनऊ आकर कई गाने रिकॉर्ड किए। इस सफलता से तलत की किस्मत चमक गई। ये वो दौर था जब सुरीले गायन और आकर्षक व्यक्तित्व वाले युवा हीरो बनने के ख्वाब संजोया करते थे। फिलहाल अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बरादरी से, जिसे आवाज दी थी तलत महमूद ने।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार से जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं गायक और अभिनेता तलत महमूद। दोस्तों, तलत महमूद की गायकी की सबसे खास बात थी उनका वाइब्रेटो यानी हल्का कांपता हुआ सुर, जो हर गीत को एक अलग ही एहसास देता था। उनके मशहूर गीतों में शाम गम की कसम, फिर वही शाम वही गम और दिल ए नादान तुझे क्या हुआ है जैसे नगमे आज भी सदाबहार हैं। इसके अलावा कुछ और मशहूर गीत भी हैं जैसे टैक्सी ड्राइवर, एक साल, जहां आरा, आशियाना, फुटपाथ, देख कबीरा रोया, सोने की चिड़िया, दिल ए नादान, पतिता, छाया, उसने कहा था और मिर्जा गालिब। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जहां आरा का ये गीत जिसे आवाज दे रहे हैं तलत महमूद।

दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि तलत महमूद सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक सफल अभिनेता भी थे। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में थीं मालिक, सोने की चिड़िया, एक गांव की कहानी, दिवाली की रात, रफ्तार, डाक बाबू, वारिस, दिल नादान, आराम, संपत्ति, तुम और मैं और राज लक्ष्मी। इन सभी फिल्मों में अपनी सादगी भरी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। उनके बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, दिल की वीरानी को क्या नाम दें हम, दिल की वीरानी को क्या नाम दें हम, तेरी आवाज में ही सुकून पा लेते हैं हम। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दाग से आवाज है तलत महमूद की।

दोस्तों, तलत साहब की आवाज में एक ऐसा जादू था जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला गया। आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो दिल खुद ब खुद उन पुरानी यादों में खो जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। इसके अलावा 1995 से 96 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया और अंततः 9 मई 1998 को तलत महमूद अपनी नश्वर काया छोड़कर चले गए। तो ये थी एक झलक उस महान कलाकार की, जिनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत और चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं फिल्म पतिता का वो गीत जिसे आवाज दी थी

0: मुराद महमूद के गए फिल्म पतिता के इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही कलाकार से अब समाप्त होता है।
1: हेलो
2: सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: श्रोताओं, एक सूचना। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अनुबंध के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु बनाए गए पैनल का विस्तार किया जाना है। इस पैनल के सदस्य के रूप में चयन के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित है। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर उद्घोषणा कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। आवेदक की आयु 1 मई 2026 से 20 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है और थोड़ी देर में समाचारों का बुलेटिन हमारे दिल्ली केंद्र से।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण

0: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17

0: स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news.

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: कार्यक्रम की पहली गजल मेहंदी हसन की आवाज में।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com.
1: और अब आइए सुनते हैं अगली गजल गुलाम अली की आवाज में।

0: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आँखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आँखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240 और 7800037222।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
2: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 9044207070।
3: नमस्कार आदाब दोस्तों, रेडियो की इस प्यारी सी दुनिया में मैं हूं आपका दोस्त और हम सफर गिरिजेश निषाद। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, जहां हर आवाज में एहसास है और हर बात में कुछ खास। ख्वाहिशों ने ही भटकाए हैं जिंदगी के रास्ते, वरना रूह तो उतरी थी जमी पे मंजिल का पता लेकर। और हमारे कौन श्रोता अपनी मंजिल पा चुके हैं, देखते हैं। हेलो
4: सर, नमस्कार, रुपेश बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत टिकरी नवाबगंज गोंडा से।
3: जी रुपेश जी, स्वागत है। आज आप पहले कॉलर हैं और हमें खुशी हो रही है कि काफी समय पहले हमारी आपसे बात हुई थी और काफी दिनों बाद आपने शायद कॉल भी किया होगा।
4: आपका इंतजार किया सर जी, कि आपकी ड्यूटी जिस दिन लगेगी उस दिन करेंगे। 27 अप्रैल को सदक सर से हमारी बात हुई थी
3: जी। आपकी ये जरा नवाजी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए रुपेश जी, कैसे हैं?
4: बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी भी नहीं हो रही है।
3: और आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ कोई पक्षी विहार भी है?
4: अर्घा पक्षी विहार
3: जी,
4: ये राष्ट्रीय पक्षी विहार है।
3: और आज प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं।
4: हाँ हाँ हाँ, आज प्रवासी पक्षी दिवस भी है और ये साल में दो बार मनाया जाता है
3: जी।
4: पक्षी दिवस, इस विषय की जानकारी मुझे आकाशवाणी अयोध्या से हुई आज।
3: जी जी जी,
4: कि साल में दो बार मनाया जाता है।
3: और कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे?
4: लोगों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार आके राष्ट्रीय अर्घा पक्षी विहार देख के जाएं, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर आके ना यहाँ कुछ समय बिताएं
3: जी,
4: तो अपने आप से साक्षात्कार होगा। क्योंकि जब आप अकेले में होते हैं
3: बिल्कुल,
4: तब अपने आप से साक्षात्कार होता है, और भीड़ में जब रहते हैं तो फिर आप पब्लिक को देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं,
3: बिल्कुल
4: अंदर की आवाज आपको सुनाई नहीं देती है
3: जी। शांति और सुकून का जो एहसास उस विहार में होगा, शायद वो वर्णन करने लायक संभव नहीं है, है ना?
4: अरे शहर से ज्यादा दूर है भी नहीं, सिर्फ
3: 20-26 किलोमीटर।
4: हाँ,
3: काफी दूर नहीं है, नजदीक है और जाया जा सकता है। तो रुपेश जी,
4: अगर नए घाट से ही मान कर चलें तो 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है।
3: जी जी बिल्कुल। रुपेश जी
4: जी,
3: आज गाना कौन सा सुनेंगे आप?
4: सर गाना आज सुनेंगे उफ ये मोहब्बत, उतरा ना दिल में कोई।
3: उफ ये मोहब्बत,
4: बाकी लाइनें गाना बताएगी।
3: और आवाज एक बार सारू
4: थोड़ा सुना दीजिएगा, पूरा लंबा गाना नहीं है, गाना छोटा ही है।
3: नहीं नहीं, बहुत लंबा गाना है और पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी हम आपकी पसंद का गाना
4: स्किप करके सुना दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, वो लाइनें जो रहेंगी ना कुमार सानू की आवाज में, वो लाइनें आ जाएंगी, म्यूजिक म्यूजिक कट जाएगा।
3: अच्छा चलिए, तो
4: स्किप करके पूरा कर दीजिए।
3: कुमार सानू की आवाज में हम पहुंचा रहे हैं आप तक फिल्म उफ ये मोहब्बत का। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
4: बहुत बहुत आभार आपका
3: जी। रूपेश मिश्रा गोंडा से, और इन्होंने पसंद किया है कुमार सानू की आवाज में फिल्म उफ ये मोहब्बत फिल्म का ये गाना।

गुलाम अली की गए इस गजल के साथ ही हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम महफिल गजल अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: उतरा ना कोई दिल में। जी हाँ, लेकिन फिर भी हमारे एक सोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: तौहीद अली सर बोल रहा हूँ, तहसील अररिया जिला बस्ती से।
0: जी तौहीद जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और काफी पहले हमारी आपसे बात भी हुई थी। तो
1: करीब एक महीने के पहले आपसे बात हुई थी।
0: लेकिन आपकी परसों भी कॉल लगी थी, है ना?
1: हाँ, मेरा कॉल परसों भी, जब मैं लगाता हूँ तब लग जाता है।
0: अरे आप बहुत खुश नसीब है। कौन सा गाना सुनेंगे
1: सर? वही गाना सुनना चाह रहा हूँ, चाकदा फायर का, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
0: कब खो गया, कुछ आइडिया नहीं है आपको?
1: कुछ नहीं है सर, सब कुछ खो गया।
0: खो गया
1: मेरी बीवी भाग गई।
0: ऐसी बात मत किया गया ऑन एयर, है ना?
1: हाँ,
0: और ये रेडियो है या इसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, ठीक है? और गाना जब भी आप फरमाइश करिए तो गाना आपको सुनवाया जाएगा, है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो फिर आपकी कॉल लगातार जो आ रही है हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।
1: जी सर, नहीं सर, नहीं बंद करना सर।
0: ऐसी गुस्ताखी फिर आइंदा से मत कीजिएगा तौहीद जी,
1: ठीक है सर?
0: गाना सुनिए।
1: ठीक है सर, नमस्ते।

0: जरूरी नहीं कि खोजा जाए और ना मिले। फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, बोलिए बोलिए। हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी आवाज मिल रही है।
1: अरे शर्मा,
0: हाँ हाँ बोलिए आप।
1: मैं चिरमिरी कुराशिया कालजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, कोरिया जनपद, कोरिया छत्तीसगढ़ से।
1: जी,
0: काफी दूर से आपने फोन किया है, तो आपको हमारे कार्यक्रम बराबर मिल रहे हैं?
1: जी बराबर सुनता हूँ सर। क्या था है सर, नेटवर्क चलते है, आपको केंद्र में फोन नहीं लगता, मैं लगाता हूँ सर। आज मेरा कैसा लग गया, मेरा ताजी का नेटवर्क सही था इसलिए लग गया।
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने कोशिश किया और फोन लग गया, हमसे बातें हो रही हैं। तो इंद्रभान जी, क्या करते हैं आप?
1: जी, मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कॉल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ।
0: कितना समय हो गया होगा आप?
1: वही ड्यूटी से घर आया सर, तो वही उसके बाद वो तैयार हुआ, नाक वाक इसके बाद खाना खाया, इसके बाद आपको कार्यक्रम में फोन किया, वो लाइन में जुड़ा।
0: बहुत अच्छा। कैसा इस समय मौसम है आपके छत्तीसगढ़ में?
1: यहाँ पे सर मौसम बेहाल है सर।
0: अच्छा,
1: देखिए कि सुबह धूप किया था, इसके बाद 3 बजे करीब एकदम बादल किया, और उसके बाद 3:30 बजे पानी गिरना चालू हो गया। आंधी तूफान आया सर रोड में, तो इतना आंधी तूफान आया कि डगाल सर टूट टूट के गिरा रोड में सर।
0: ओह,
1: पेड़ गिरा।
0: तो अस्त व्यस्त जैसी स्थिति है आपके यहाँ?
1: जी,
0: और आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है, तो आपके लिए तो समस्याएं बढ़ गई होंगी।
1: जी सर,
0: क्योंकि आंधी तूफान से बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, और पेड़ों की वजह से खंभे बिजली की व्यवस्था चौपड़ हो जाती है।
1: हाँ सर, वो क्या है कि जैसे बिजली के तार जैसे आपस में सट जाता है, तो लाइट बंद करना पड़ जाता है, और कभी कभी सर बिजली का तार में डगा।

0: गिर जाता है तो उसमें भी तार कुछ
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें भी सर तार गड़बड़ हो जाता है और लाइट भी बंद रहता है घर का,
1: काम
0: दिक्कत के सामने रहना पड़ता,
1: काम बढ़ जाता है, आप लोगों का काम बढ़ जाता है इसकी वजह से।
0: जी काम बढ़ जाता है और उसमें तो लोगों को लाइट भी नहीं मिल पाता है और जो मतलब कि कर्मचारी है उनका भी परेशानी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इंद्रभान जी आपसे बात करके। आज गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
0: फिल्म का नाम है हेरा फेरी, गीत की बोले वक्त की हेरा फेरी है, गाय की महेंद्र कपूर किशोर कुमार
1: जी,
0: और सबसे पहले गीत आपको कहने जैसे साहब प्रभात श्रोता को आकाशवाणी अयोध्या में जुड़े सभी लोगों को
1: जी,
0: आपके परिवार जिनको रिश्तेदारों को दोस्तों को हेलो एक्टर रेडियो श्रोता मौसम को डिलीट कर सर आप मैं इंतजार करूँ अपने पसंद के गीत सुनने के लिए पहुंचा।
1: बहुत बहुत

0: बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रभान जी, आपने फोन किया और आपकी पसंद का गाना हमने पहुंचा दिया आप तक। गाना सुनिए और फिर कभी फोन करिएगा, आपसे बातें करेंगे। जी धन्यवाद,
1: जरूर करेंगे सर फोन, बस नेटवर्क सही रहेगा मैं जरूर करूंगा सर, लगाता हूँ तो भी।
0: जी जी शुक्रिया
1: शुक्रिया।

0: नहीं, हम हैं तेरे साथ।
1: बिल्कुल,
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात,
1: क्योंकि

0: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें। जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आप यूं ही हमारा साथ निभाते रहिए और 73-76

0: 4490 नंबर मिलाते रहिए। फिलहाल हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: जी। हाँ हेलो। हाँ सर बताएं।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते सर
0: जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे।
1: हाँ विनोद श्रीवास्तव।
0: विनोद श्रीवास्तव जी, आप काफी करीब से हैं, नजदीक से हैं।
1: जी
0: विनोद जी, आपने इससे पहले कभी कॉल लगाई थी?
1: जी हाँ, दो तीन महीने ट्राई कर रहा सर, लग नहीं रही थी।
0: लग नहीं रही थी,
1: निराश हो गए थे, लेकिन आज लग गई होगी।
0: बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करते रहिए, कॉल तो लगेगी ही। देखिए आज लग गई आपकी कॉल।
1: बहुत अच्छा लगा सर,
0: खुशी हो रही है आपको ना? जी कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: वही बताए थे, जब जब फूल खिले का पर देती हूँ उसे नाकियाँ मिलाना, मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप काफी उम्र दराज हैं और गाना भी आपने ऐसे ही।
1: जी जी हाँ, तो हम पुरानी पिक्चर देखते थे तो बहुत कम देखने का अवसर मिलता था उस समय, जो है गाँव में रहते थे थोड़ा तो कम देख पाते थे।
0: जी
1: जी हाँ।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताना पसंद करेंगे कि आप पहले करते क्या थे? अब तो आप घर पर रहते हैं, लेकिन पहले आप क्या करते थे?
1: हम टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में।
0: अच्छा अच्छा
1: जी हाँ।
0: तो आपने काफी समय शिक्षा देने में वक्त अपना दिया।
1: हाँ, तो जी अब बेटा मेरा नौकरी पा गया है तो बोलता है नहीं करना है काम, आप तो बैठे घर पे।
0: बहुत अच्छी बात है, आपके ये अच्छे संस्कार के परिचायक हैं कि बेटे ने आपको घर बैठा तो दिया है। जी
1: जी सौभाग्य से हमारा बेटा भी प्रोफेसर हो गया है
0: जी कॉलेज में। अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो अच्छी बात है, आप इस समय घर पर रहते हैं और
1: जी जी
0: घर की देखरेख करते होंगे, बच्चों को देखते होंगे।
1: हाँ, जी, जी, और समय नहीं मिल पाता था, अब समय मिल रहा तो अकला।
0: और रेडियो, रेडियो ऐसे समय में आपका सहारा बनता है
1: जी?
0: रेडियो का मनोरंजन, रेडियो के द्वारा मनोरंजन जी, जी, आपका सहारा।
1: जी जी हाँ एकदम, बचपन से सुनते हैं।
0: जी जी
1: बचपन से रेडियो। हाँ जी, बिना का गीत माला वगैरह आता था और वो क्या।
0: जी जी आपने बहुत बहुत पुरानी बात आपने कह दी, बहुत सारे लोग तो बिना का गीत माला जानते नहीं।
1: जी जी जी जी, रेडियो जब आया था घर में तो उतना मतलब किसी मेहमान के आने पे उतनी खुशी नहीं जितना रेडियो की, और बड़ी उसकी देखभाल होती थी। आज
0: सच का
1: हमारे पास है, उसको बहुत संभाल के रखते।
0: आपने जिस दौर की बात बताई उस समय वास्तव में रेडियो एक बहुत बड़ी बात होती थी, और
1: बहुत बड़ी बात जी।
0: और उस समय रेडियो पर बिना का गीत माला जिस कदर धूम, जिस कदर धूम मचा रहा था लोगों के बीच, वास्तव में रेडियो की प्रसिद्धि वहीं से शुरू होती है। तो श्रीवास्तव जी, आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं आप तक, बात करके अच्छा लगा आपसे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: जी शुक्रिया।

0: जरूरी नहीं कि हर ताल्लुक मोहब्बत का हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से ऊंचा मुकाम रखते हैं। और हमारे इस सजीव फोनी कार्यक्रम में हमारे अगले दोस्त कौन आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: चांदनी
0: जी, स्वागत है चांदनी जी हमारे आज के प्रोग्राम में। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: याराना मूवी का गाना सुनेंगे।
0: याराना मूवी का कौन सा गाना?

0: ना।
1: ये किसी दोस्त को आपने समर्पित कर दिया ये गाना?
0: सर हमारे सभी दोस्तों के लिए ये गाना है, राज के लिए और अमरजीत सर के लिए।
1: अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आपकी पसंद का गाना हम उन सभी तक पहुंचा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चांदी। नमस्कार।

0: दोस्तों एक कॉल हमारे पास आई थी करण की। कोई स्टूडेंट थे लेकिन उनसे बात होने के बाद उनकी कॉल कट गई और अगली कॉल हमारे पास पहुंच चुकी है। इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम?
1: हमारा नाम सबीना है
0: जी। सबीना जी, आपने इससे पहले कभी बात किया है?
1: हाँ, नहीं, बात तो नहीं किए हैं। फोन कई बार लगाए लेकिन फोन उठा नहीं।
0: अच्छा, फोन उठा नहीं या फोन आपकी बात नहीं हुई? कुल मिलाकर आपकी बात नहीं हुई?
1: नहीं, बात पहली बार हो रही है।
0: पहली बार हो रही है तो खुशी हो रही है आपको कि नहीं?
1: हाँ, बहुत खुशी हो रही है।
0: बहुत खुशी हो रही है। और कार्यक्रम सुनती रहती हैं?
1: हाँ, कार्यक्रम रोज सुनते हैं, रोज फोन लगाते हैं लेकिन उठता नहीं है।
0: कार्यक्रम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: जितना मोबाइल पे आता है सब सुनते हैं।
0: सब सुनती हैं। कुछ जानकारी भी मिलती है आपको?
1: हाँ, जानकारी मिलती है।
0: और मनोरंजन भी होता है?
1: हाँ।
0: तो आप घर में रहती हैं या बाहर निकलकर कुछ करना भी होता है?
1: मैं घर में रहती हूँ।
0: घर में रहती हैं, घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और गाने कार्यक्रम सुनती रहती हैं?
1: कार्यक्रम।
0: बहुत अच्छी बात है। गाना आज कौन सा सुनवा दें आपको?
1: जिगर पिक्चर का।
0: चलिए हम आपको सुनवा देते हैं। गाना आपने काफी अच्छा पसंद किया है और हमको भी पसंद है ये गाना।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: निराशा के अंधेरे में उम्मीद का दीप जलाए रखिए। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराते रहिए। हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्ते सर
2: जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: सर स्वाति सिंह, मनकापुर जिला गोंडा से बात कर रहे
2: हैं। स्वाति जी, आप हमें लगता है कि शायद कोई फोन इन प्रोग्राम छूट नहीं रहा आपसे।
3: नहीं सर, छूट भी जाता है कभी कभार।
2: छूट जाता है
3: फोन तो छूट जाता है।
2: अच्छा

0: खैर कार्यक्रम तो आप ही लोगों का है और आप ही लोगों के लिए है, और मकसद भी है हम सभी का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रोता फ़ोन करें और उनसे हम बातें करें, उनकी पसंद का गाना सुनवाएं। तो स्वाति कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
1: सर उम्मीद फिल्म का सुनवा दीजिए।
0: उम्मीद फिल्म का कौन सा गाना?
1: मुझे इस पे है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी।
0: गाना तो बहुत अच्छा है और मोहम्मद रफी की आवाज में है तो और भी अच्छा होगा, तो सुनिए जी। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति।
1: थैंक यू सर। नमस्ते
0: नमस्ते।

0: दोस्तों हमारे पास 9 मिनट शेष बचे हैं और हमारे एक श्रोता लाइन पर आ चुके हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो हमारे ये श्रोता डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। एक श्रोता हमारे पास आए थे, उनकी कॉल आई थी प्रदीप जी की और दूसरी कॉल मसौदा से आई थी रेखा जी की। दोनों डिस्कनेक्ट हो गई और दूसरी का तीसरी कॉल आ रही है, तो देख लेते हैं कौन हो सकते हैं। हेलो हेलो, ये आवाज भी हमारे पास नहीं पहुंच रही है और हम अगली कॉल की प्रतीक्षा में हैं। और देखिए अब ये कॉल भी आ चुकी है। हेलो हेलो, हमारे श्रोता की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: राम जी दास।
0: कहां से फोन किया आपने? कहां से?
1: अयोध्या से।
0: क्या करते हैं राम जी?
1: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में?
1: दसवें का पेपर दिए हैं।
0: अच्छा, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं पहुंच पा रही, हमारे पास कट कर आवाज आ रही है।
1: गाना सुनना है।
0: चलिए सुनिएगा गाना, आपकी पसंद का फिलहाल हम पहुंचा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: दोस्तों हमारे पास 5 मिनट शेष बचे हैं और हमारे पास एक कॉल भी आ चुकी है, तो हम बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम?
1: जगदम्बिका प्रसाद दुबे सर।
0: जी जगदम्बिका जी, कहाँ से फोन किया आपने?
1: मऊ वाला बाजार सर, जो है मऊ वाला बाजार से बोल रहे हैं सर।
0: पहले तो ये बताइए कि आपके पीछे रेडियो बज रहा है?
1: जी मोबाइल।
0: मोबाइल, वो भी आपने हैंड फ्री कर रखा है?
1: जी।
0: ऐसा ना किया करिए, जब भी फोन करिए तो।
1: जी।
0: इससे बहुत डिस्टरबेंस होता है, आवाज बहुत क्लियर नहीं आती है और बातचीत में व्यवधान पैदा होता है।
1: जी
0: बताइए, गाना कौन?
1: गाना आपका बजता है सर, तो आवाज

0: हो जाती है सर, कहीं से वहीं दिक्कत है सर वहाँ
1: नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हैंड फ्री कर देते हैं या फिर कोई साउंड बजा रहे होते हैं या किसी बंद कमरे में होते हैं जिसकी आवाज हमें पलट कर मिलती है,
0: जी,
1: इससे डिस्टरबेंस होता है, बातचीत ठीक से नहीं हो पाती।
0: जी
1: चलिए गाना कौन सा सुनेंगे आज?
0: जी लाल दुपट्टे वाला सुनेंगे सर, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा से, हवा के झोंके से।
1: ये आपने पहले बताया था लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से।
0: जी
1: हाँ, और अब आप फिल्म आपने कोई और चेंज कर दिया है। चलिए गाना सुनिए फिर फोन करिएगा, धन्यवाद फोन करने के लिए।
0: हेलो सर।
1: जी हाँ हाँ बोलिए।
0: हम बताना चाहते हैं सर कि हम मोक्ष वाला बाजार से तो बोल रहे हैं लेकिन रहने वाले कहुआ इनायत नगर के हैं।
1: अरे ठीक है भैया, इनायत नगर भी अयोध्या में ही है।
0: जी
1: कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, है ना?
0: जी
1: हाँ हाँ चलिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।

दोस्तों एक आखिरी कॉल हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास केवल बात करने का वक्त है, गाना तो नहीं सुनवा पाएंगे। हेलो हेलो, हमारे श्रोता, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो बात कर सकते हैं। नहीं हो सकती बात, चलिए गाना सुनिए।

0: हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: पप्पू सोनकर
0: जी, नाम एक बार फिर से बता दीजिए
1: जी।
0: आप नाम अपना एक बार फिर से बता दीजिए।
1: पप्पू सोनकर।
0: जी, तो आपकी कॉल लगती रहती बराबर, है ना?
1: सर, लग चुकी है, उसके बाद ट्राई कर रहे थे, टाइम निकलने के बाद फिर अब जाके लगी है।
0: और अर्जुन सोनकर जी की भी आज कॉल लगी थी?
1: बहुत सारे थी, 5-6 दिन के बाद लगी है, वो टाइम थोड़ा सा निकल गया।
0: आप लोग अगर
1: सर जी, कम से कम आपसे बात तो हो गई।
0: जी जी, और गाना हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, इसका हमें खेद है, फिर फोन करिएगा।
1: जी, कम से कम आपसे बात हो गई, यही जी होती वाली बात।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: लगवा लेंगे।
0: जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे आज का सजीव फोनी कार्यक्रम फिलहाल अब यहीं पर समाप्त होता है। हमें कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दिया स्वप्निल मिश्रा ने, और आपका दोस्त गिरिजेश निषाद अब चाहता है इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिसे हमारे मुंबई केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

0: श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अदलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के

0: 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaka Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government government in the state.